वंदे मातरम। नमस्कार, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातकालीन सभा में। आज है दिन सोमवार, अंग्रेजी सन ईसवी 2026 की सितंबर माह की 28वीं तारीख, तदनुसार शक संबत 1948 की आश्विन माह की छठी तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातकालीन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रातकालीन सभा में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी में समाचार। आइए अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की, सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, प्रत्येक किसान यह अपेक्षा करता है कि उसकी जोत के संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। किसान भाइयों, हमारी मृदा जितनी अधिक स्वस्थ होगी हम उतनी ही अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है मृदा में पोषक तत्वों का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक खेती का सिद्धांत पुराना है परंतु अभी इसे व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कई विकसित देशों में जैविक खेती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें मिट्टी, उत्पादन विधि और उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारतीय जैविक खेती शुद्ध जैविक विधि, समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली तथा समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित है। किसान भाइयों, शुद्ध जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और पौध संरक्षण दवाओं का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली में समेकित पोषक तत्व, कीट एवं व्याधि प्रबंधन तकनीकी को अपनाया जाता है। जबकि समेकित कृषि प्रणाली एक निम्न लागत की कृषि प्रणाली है, जिसमें पोषक तत्वों से परिपूर्ण जैविक स्रोतों को पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। इस पद्धति में फसल उत्पादन और पशुपालन को साथ साथ तथा एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है। इन तीनों पद्धतियों में से भारतीय किसानों द्वारा मुख्य रूप से जैविक पद्धति और हरित क्रांति पद्धति को अपनाया जा रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व संतुलन हेतु दलहनी फसलों की एकल और मिश्रित खेती आवश्यक है। इसके साथ ही मृदा में कृषि अवशेष, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, जीवाणु खाद और बायोडायनेमिक कंपोस्ट का प्रयोग और पौध सुरक्षा हेतु खरपतवार की सफाई तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग जरूरी है। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता का संतुलन बनाए रखने के लिए फसल की मांग और आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है, जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके और मृदा स्वस्थ सुरक्षित बना रहे। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों से फसल को सभी तत्वों का निश्चित अनुपात में ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य और महत्व है जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कोई एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक नहीं है। यह संतुलन बिगड़ने पर उत्पादन सीधे प्रभावित होता है। इस व्यवस्था या तकनीकी को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की संज्ञा दी गई है। कृषि में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के कई लाभ हैं, जैसे अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाना, मृदा की उत्पादकता और स्वास्थ्य बनाए रखना, गुणात्मक उत्पादन प्राप्त करना, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से फसलों का बचाव, कीड़े मकोड़ों के प्रभाव से प्राकृतिक तौर पर कम करना और लागत अनुपात में वृद्धि प्राप्त करना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से संभव है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों और जैविक खादों का प्रयोग करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। धान व गेहूं के फसल चक्र में ढेंचे की हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र में परिवर्तन करें। आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर तथा कूड़ा करकट का प्रयोग कर कंपोस्ट आप तैयार करें। खेत में उपलब्ध फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिला दें, इससे अनेकों लाभ हैं। कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलित रूप में उपयोग करें। जी हाँ किसान भाइयों, मृदा में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मृदा स्वस्थ होगी तब अधिक से अधिक फसल उत्पादन संभव है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में बातें आज बस यहीं तक। दीजिए हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति। नमस्कार
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आइए अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 281,
2: एपिसोड नंबर 281, 281।

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण

दोस्तों रामचरितमानस गान सुनने के बाद आइए जुड़ते हैं चिंतन कार्यक्रम से और रेडियो साथी निर्मला तिवारी से सुनते हैं सफलता की कुंजी आत्मविश्वास।

सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत। कोई भी महान काम एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, इसे करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और जब तक सफलता ना मिले तब तक थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करके बड़े काम को कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, सकारात्मक सोच का होना, यह सफलता की ओर हमें ले जाता है। कई बार हम असफलता से निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। असफलता मिलने के बाद हमें उससे सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और पुनः नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलताएं पाई, लेकिन जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनके जीवन की ओर झांकते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कठिन संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के दौर में लोग बहुत ही छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रयास करने से डरते हैं और छोटा रास्ता अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोड़ी पल के लिए आप किसी कार्य में सफल हो जाएं।

लेकिन आपके जीवन में ठहराव नहीं आ पाएगा। वो ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसलिए जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। सफलता का स्वाद तभी मिलेगा जब आप तपेंगे, संघर्ष के दौर से गुजरेंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि सफलता कितनी अच्छी चीज है। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें, कभी भी निराश ना हो, आशा का दामन ना छोड़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता की कुंजी है कठिन मेहनत, संघर्ष। और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उस काम को अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो चाहते थे वहां तक पहुंच जाना, इसलिए वो पहुंचे। और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए, बार बार गिरे, लेकिन प्रयास किया और प्रयास करते हुए वो वहां पहुंच गए। एक छोटी सी चींटी के बारे में ही देख लीजिए कि वह बार बार प्रयास करती है, असफल होती है, गिरती है, लेकिन उसके बाद भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ती और अंततः वह उस ऊंचाई को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेती है जो वह पाना चाहती है। इसलिए हमें यदि जीवन में सफलता चाहिए तो फिर मेहनत से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आपने रेडियो साथी निर्मला तिवारी से सुना सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आज हम आराधना में सुनेंगे तृप्ति।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना, जो भक्ति संगीत पर आधारित है। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं तृप्ति शाकिया की आवाज में भक्ति संगीत।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना, जो भक्ति संगीत पर आधारित है। आज आराधना के हमारे कलाकार हैं तृप्ति शाकिया। तो आइए दोस्तों, तृप्ति शाकिया की ही आवाज में सुनते हैं एक और भक्ति संगीत।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे तृप्ति शाकिया की आवाज में भक्ति संगीत। कार्यक्रम था आराधना। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र, एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा से और सुनते हैं भेंटवार्ता, अस्थमा कारण एवं उपचार। आज के भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस

0: कार्य करें।
1: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूं कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीजों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
0: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
1: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
0: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
1: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
0: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
1: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूँगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
0: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुंचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है, तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपकी इन्हेलर हट सकती है या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा

0: तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है, तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है, तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: दोस्तों, आज स्वास्थ्य चर्चा में आपने सुना डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय को, वो बता रही थी अस्थमा के कारण एवं उपचार। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे संस्कृति, हिंदी वो अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रभाति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सितम्बर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायुप्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में

0: बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः अष्टोत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य सितंबरमासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 6/11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20/26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यं उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां सम्प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः कालविपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरम नगरे प्रथमायाम् एकदिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।

0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 29, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control LOC in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. The government noted that the resolve shown in 2016 laid the groundwork for subsequent bold actions, including the 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC. Mr. Modi recalled how the world was astonished by the manner in which Indian soldiers crossed the LOC to take action against terrorism. Prime Minister said that

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। आइए अब जुड़ते हैं फिर से एक बार आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनते हैं प्रातकालीन सभा में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों अब से

करता प्रशांत कौरव। इसके बाद दोस्तों 8 बजे हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे दिल्ली केंद्र से ही रिले मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद हम 8:30 पे जुड़ेंगे अपने रांची केंद्र से और सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। दोस्तों 8:45 पे हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 MHz पर और सुनेंगे लता मंगेशकर की जयंती पर उनके द्वारा गाए फिल्म गीतों का गुलदस्ता। प्रस्तुति स्वर होगा सायका चटर्जी का, यानी कि मेरा। प्रस्तुति सहायक होंगे संतोष कुमार और प्रस्तुतकर्ता प्रशांत कौरव। इसके बाद दोस्तों 9:30 पे हम जुड़ जाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से और सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1380।

दोस्तों 10 बजे का समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़कर हिंदी समाचार और 10:05 का समय होगा अंग्रेजी समाचार सुनने का। इसके बाद 10:10 पे हम जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से और सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले उनकी यादों के रंग तरंग, यादों की महफिल जैसे कार्यक्रमों को। दोस्तों इसके बाद 1 बजे से लेकर शाम 5:30 पे हम बारी बारी से जुड़ते रहेंगे अपने दिल्ली, रांची और मुंबई केंद्रों से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती की प्रस्तुति सुरीला सफर, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेहत नामा और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। इसके बाद दोस्तों शाम 5:30 पे हम जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुनेंगे अपने रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों जुड़ते हैं अपना लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश के साथ। दोस्तों आज के पलाश के हमारे कलाकार हैं इग्नेश कुमार एवं साथी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इग्नेश कुमार एवं साथियों की आवाज में कुछ नागपुरी लोकगीत।
1: जगत

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। पलाश के तहत आपने सुना इग्नेश कुमार एवं साथियों की आवाज में कुछ नागपुरी लोकगीत। अब बारी है सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुनने का, जिसका नाम है स्वर सरिता। आकाशवाणी डाल्टनगंज के लोकप्रिय कार्यक्रम स्वर सरिता में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुरों की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। एक ऐसी ही आवाज जिसने प्रेम को आवाज दी, विरह को आवाज दी, खुशी को आवाज दी, दर्द को आवाज दी, और जब गजल को आवाज दी तो अल्फाज में एक नई रूह पैदा हो गई। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। 28 सितंबर को उनके जन्मदिवस पर स्वर सरिता की ये विशेष प्रस्तुति लेकर हम आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार आपके बीच में है। इसके प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सबका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सायका चटर्जी का, जबकि प्रस्तुति सहायक है संतोष कुमार और प्रस्तुतकर्ता प्रशांत गौरव। साथियों, आज हम सुनेंगे लता जी के कुछ चुनिंदे गजलें, ऐसी गजलें जिनमें उनकी आवाज का दर्द भी है, मिठास भी है और भावनाओं की गहराई भी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गजल से जिसमें एक बंदा अपने रब से कुछ मांगता है, दुनियाई दौलत नहीं बल्कि एक ऐसा दिल जो महसूस कर सके।

कितनी अद्भुत बात है, लता जी की आवाज में दर्द कभी केवल दर्द नहीं रहता, वो एक प्रार्थना बन जाता है, एक एहसास बन जाता है। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, कतील शिफाई की कलम और जगजीत सिंह का संगीत और उस पर लता जी की आवाज, यही वो संगम है जिसने सजदा को गजल प्रेमियों के बीच यादगार बनाया। सजदा एल्बम में लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने मिलकर गजल की दुनिया को एक अलग रंग दिया। इस एल्बम में नाजुक प्रेम से लेकर सामाजिक अकेलेपन और दार्शनिक भाव तक अनेक रंग दिखाई देते हैं। आइए सुनते हैं अब अगली गजल, जिसमें जिंदगी को केवल दूर से देखने की नहीं बल्कि उसे महसूस करने की बात

जिंदगी कभी धूप है कभी छांव, कभी मिलन है कभी बिछड़ना, और कभी कुछ ऐसी यादें जो वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे साथ साथ चलती रहती है। लता जी की आवाज की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो शब्दों को केवल गाती नहीं थी, उन्हें जीती थी। उनकी आवाज में उम्र का कोई बंधन नहीं था, युवा प्रेम हो या उम्र की परिपक्वता, हर भावना उनके सुरों में अपनी जगह बना लेती थी। आइए दोस्तों, अब पेश है एक ऐसी गजल जिसमें याद, तस्वीर और मोहब्बत तीनों एक साथ मौजूद हैं।

दोस्तों, कुछ तस्वीरें कागज पर होती है और कुछ तस्वीरें दिल में। कागज की तस्वीर समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन दिल में बसी तस्वीर वो अक्सर उम्र भर रंगीन रहती है। यही तो गजल की खूबसूरती है, कम शब्द लेकिन भावनाओं की पूरी दुनिया। लता जी ने गजल को भी उसी संवेदनशीलता से गाया जिस संवेदनशीलता से उन्होंने फिल्म संगीत को अपनाया। उनकी आवाज में एक नजाकत भी थी और ठहराव भी। अब जरा उस दुनिया की बात करें जहां इंसान बहुत सारे लोगों के बीच रहकर भी अकेला हो जाता है। निदा फाजली की कलम से निकले ये शब्द आज भी उतने ही अर्थपूर्ण लगते हैं, खासकर तब जब उसे

लेकिन अपनेपन की तलाश आज भी जारी है। शायद यही वजह है कि अच्छी गजलें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर दौर में किसी न किसी श्रोता की अपनी कहानी बन जाती है। और जब ऐसी गजल को लता मंगेशकर जैसी आवाज मिल जाए तो वो सिर्फ एक गीत नहीं रहती, वो एक याद बन जाती है। दोस्तों, अब कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए सुनते हैं एक ऐसी गजल जिसमें मोहब्बत के जलवों की बात है। लता जी की आवाज में यह गजल अपने आप में एक बेहद खूबसूरत अनुभव है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी डाल्टनगंज का कार्यक्रम स्वर सरिता, और आज का ये विशेष अंक समर्पित था स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की अमर स्मृति और उनके जन्मदिवस को। लता जी आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे घरों में है, हमारी यादों में है, हमारी खुशियों में है, हमारे दर्द में है, और सबसे बढ़कर हमारे संगीत में है। उनका स्वर आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाता रहेगा कि सुर केवल गले से नहीं निकलता, सुर निकलता है संवेदना से।

0: भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, या कार, क्या रॉकेट जो आपके डिवाइस सैटेलाइट भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 20 गुना और 80% बढ़ है। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया।
0: समाचार प्रभात का फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल की परियोजना शुरू की। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
5: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इंकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
6: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
7: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में

0: श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Tiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Man Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
2: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade.

0: वाहन निरीक्षकों को मुख्य और सहायक सड़कों पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने लोगों से अवैध पार्किंग की सूचना देने की भी अपील की है। बता दें कि यह कार्रवाई जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर 24 सितंबर को सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर में मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी त्रिषा सिंह समेत 4 लोगों की मौत के बाद लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस आज से 4 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। अभियान की थीम सुरक्षित सफर सुरक्षित कल रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। MMDR संशोधन बिल को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कोडरमा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने संशोधन बिल को लेकर दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त उपकर लगाए जाने से कोयला महंगा हुआ और खरीदार नहीं मिल रहे थे।
1: सैकड़ों ट्रक इलीगल खनिज पदार्थ झारखंड से बाहर भेजी जाते हैं, उस इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून अगर प्रभावी हो जाता है राज्य में तो लीगल कोयले का दाम बहुत नीचे आ जाएगा, तो इलीगल कोयला कोई खरीदेगा नहीं, डीओ से लोकल कोयला उठाएंगे, बहुत आसानी से ये अपने अतिरिक्त सोर्स पैदा कर सकते।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि MMDR बिल से राज्य को काफी नुकसान होगा, इससे राज्य के पास कुछ बचेगा ही नहीं। उन्होंने वित्त मंत्री को दिए गए अपने प्रस्ताव का भी जिक्र किया।
2: MMDR एक्ट में उन्होंने संशोधन किया, राज्य के वित्त मंत्री की ओर से मैंने कहा केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि मैडम ये राज्य की सूची में शामिल है, हमारी जमीन हम कैसे टैक्स लगाएंगे ये हमको निर्धारण कर रहा है, कोयला आपके सूची में जरूर है केंद्र की सूची, तो आप कोयला पर कोई भी रॉयल्टी किसी भी प्रकार के टैक्स को आप निर्धारित करिए, हमें कोई।
0: केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय के अनुसार यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके माध्यम से बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची के आड्रे हाउस में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को श्रद्धांजलि देकर हुई। इस समारोह में पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने पर्यटक मित्रों, होटल आतिथ्य क्षेत्र और अन्य स्टेक होल्डर्स को सम्मानित किया। पर्यटन निदेशक नमन प्रिय लकड़ा ने कहा कि यह आयोजन झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के साझा संकल्प का प्रतीक है। मेरा युवा भारत रांची की ओर से सदर अस्पताल रांची में मेरा स्वास्थ्य मेरी शान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के पंजीकरण के साथ सामान्य स्वास्थ्य जांच भी की गई। वॉलंटियर सूरज कुमार ने बताया कि प्रतिभागियों को नशे और तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों तथा इससे बचाव के उपायों के बारे में भी बताया गया।
3: मैं मौजूद हूँ सदर रांची में, जहाँ पर नशा मुक्त युवा को विकसित भारत के अंतर्गत 24 सप्ताह के अंदर मेरा स्वास्थ्य मेरे घर पे प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहाँ पर युवाओं को ड्रग के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया और वहाँ पे हेल्थ चेकअप भी करवाया गया।
0: दुमका जिले में केंद्र सरकार के एनीमिया मुक्त भारत के कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और एनीमिया से पीड़ित अन्य लोगों को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां निशुल्क दी जा रही हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिले के सभी लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की है।
4: एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी यहाँ पे दुमका जिला में पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है, जिसके लिए जो बच्चे गर्भवती महिलाएं और जो अफेक्टेड ऐसे लोग उनके लिए स्पेशल

0: कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि इस फैसिलिटी का, एनीमिया मुक्त भारत अभियान का जो अभियान जो चल रहा है, उसका हम लोग लाभ लें।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य में इस महीने के अंतिम दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी वायुमंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव अब कम हो गया है। 3 अक्टूबर तक राज्य में मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स प्रीमियर लीग 2026 के स्टील हार्ट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में रोड रोलर ने आरसीसी वॉरियर को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पथ निर्माण विभाग कैडर के राजपत्रित अभियंताओं ने हिस्सा लिया। विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आयोजन को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सराहनीय पहल बताया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज बैंक हड़ताल स्थगित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आईबीए के आश्वासन के बाद बैंकों की हड़ताल टली। प्रभात खबर की लीड है, एसआईआर में झारखंड के 63 लाख से अधिक वोटरों को राहत, बीएलओ खुद घर से लेंगे दस्तावेज। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेपीएससी घोटाला मामले में सीआई का खुलासा, रांची के सागर पैलेस में होता था पैसे का हिसाब किताब। वहीं हिंदुस्तान के दैनिक की सुर्खी है, झारखंड में भी सीआईसी पर चढ़ा सियासी पारा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक यूनियनों की मांगों पर बनी सहमति, आज से होने वाली प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टली। परिवहन मंत्री दीपक बीरुआ ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सभी जिलों में सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश, आज से चलेगा अभियान। पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच की आज होगी शुरुआत, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे लॉन्च, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा पशुधन बीमा पोर्टल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में बढ़ेगा तापमान, बारिश से मिलेगी राहत, 3 अक्टूबर तक बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं। और रांची में आयोजित पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स प्रीमियर लीग में रोड रोलर ने आरसीसी वॉरियर को हराकर जीती ट्रॉफी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
3: बहू पेट से है ना,
2: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
3: ये तो खुशी की बात है,
2: घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
3: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
4: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
2: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
7: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
8: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
7: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
8: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
7: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या,
9: वो भी तो 2-2 जान संभाल रही है।
7: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं हूं आपका रेडियो सा
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आप लोगों का पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस महान स्वर को जिसकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। जी हां भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी की। 28 सितंबर लता जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज हम याद करेंगे उनके फिल्मी सफर के कुछ ऐसे सदाबहार गीत जिन्हें सुनते ही संगीत प्रेमियों के मन में यादों की एक पूरी दुनिया बस जाती है। भाइयों बहनों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सैका चटर्जी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक है संतोष कुमार, जबकि प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव। तो आइए भाइयों बहनों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो मोहब्बत की मासूमियत और खूबसूरती का एहसास कराता है।

भाइयों बहनों, कुछ आवाजें गीत खत्म होने के बाद भी हमारे भीतर गूंजती रहती है। लता जी की आवाज भी ऐसी ही थी। उनकी आवाज में कभी नटखट फन था, कभी शोखी, कभी प्रेम की गहराई और कभी विरह की कसक। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की एक खूबसूरत मासूमियत है।

क्या कहने उस आवाज के, लग जा गले केवल एक गीत नहीं बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में दर्ज एक यादगार एहसास है। लता जी ने अपने लंबे संगीत सफर में अलग अलग दौर की अभिनेत्रियों और संगीतकारों के लिए अपनी आवाज दी और हर दौर में उनकी आवाज का आकर्षण बरकरार रहा। भाइयों बहनों, अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें प्रेम के साथ साथ एक मीठी सी शरारत भी है और दूसरी तरफ उसकी गहराई में डुबोकर अगले को बर्बाद कर देने की एक धमकी भी। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो डरना न सीखा हो।

भाइयों बहनों, संगीत बदलता रहा, फिल्में बदलती रही, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन लता जी की आवाज हर दौर में अपनी मिठास और भावनाओं के साथ श्रोताओं के दिलों में बनी रही। कभी उनकी आवाज में प्रेम की मासूमियत सुनाई दी तो कभी रिश्तों की गहराई। आइए भाइयों बहनों, अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत से सजा फिल्म घर का वो बेहद खूबसूरत गीत जिसमें लता जी के साथ आवाज दे रहे थे किशोर कुमार।

भाइयों बहनों, लता जी की आवाज में भावनाओं की जो गहराई थी, शायद वही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। खुशी हो या गम, मिलन हो या बिछड़ना, उनकी आवाज हर भावनाओं को श्रोता के दिल तक पहुंचा देती थी। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए सुनते हैं एक बेहद लोकप्रिय गीत, एक ऐसा गीत जिसमें सपनों की दुनिया है, प्यार की मिठास है और लता जी की आवाज की वो खास चमक है जिसे सुनकर दिल भी मुस्कुरा कर कह उठता है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।

तो आइए दोस्तों, गीत गुंजन कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा, लेकिन तुरंत अब हम जुड़ेंगे एक और कार्यक्रम से जिसका नाम है जोहार पलामू। दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम में भी आज हम याद करेंगे भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। तो आइए आज के इस विशेष जोहार पलामू कार्यक्रम में सुनते हैं लता जी के कुछ सदाबहार गीत और जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू।

भाइयों बहनों, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा शुरू कर दी थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आगे चलकर भारतीय संगीत का इतिहास बनने वाला था। लता जी ने शुरुआत में फिल्मों में अभिनय भी किया और गायन भी, लेकिन उनका असली पहचान बना उनकी आवाज। 1940 के दशक के आखिर में उनकी आवाज ने फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की, और फिर आया फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला, जिसने लता जी को घर घर पहुंचा दिया।

कभी प्यार, कभी शरारत, कभी दर्द, कभी जिंदगी को खुलकर जीने की खुशी, और शायद यही वजह से उनकी आवाज हर उम्र के लोगों की आवाज बन गई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआती दौर में उनके उच्चारण को लेकर सवाल उठे। लता जी ने इसे चुनौती की तरह लिया और उर्दू उच्चारण पर मेहनत की। बाद में उनकी आवाज में हिंदी, उर्दू और विभिन्न भारतीय भाषाओं के गीत बेहद स्वाभाविक सुनाई देने लगे। यानी लता जी सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं थी, वो लगातार सीखने वाली कलाकार थी।

आज फिर जीने की तमन्ना है। भाइयों बहनों, ये गीत सिर्फ एक फिल्म गीत नहीं लगता, बल्कि जैसे जिंदगी को फिर से महसूस करने की आवाज हो। लता जी की आवाज में यही खासियत थी, वो गीत सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि उसे जीती थी। लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु और अन्य कई भाषाओं में भी गीत गाए। उन्होंने लगभग 8 दशकों तक भारतीय संगीत जगत को अपनी आवाज दी और इस लंबे सफर में उन्होंने अनगिनत संगीतकारों और गीतकारों के साथ यादगार काम किया। उनके गीतों में मदन मोहन की धुनें हों, शंकर जयकिशन का संगीत, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हर संगीतकार के साथ उनकी आवाज एक अलग रंग में दिखाई देती थी।

भाइयों बहनों, कहा जाता है कि कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और खूबसूरत होते जाते हैं। समा है ये प्यार का ऐसा ही ये गीत है। आज भी जब ये गीत बजता है तो एक पूरा दौर हमारे आंखों के सामने आ जाता है। लता जी को देश का सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन इन तमाम सम्मानों से बड़ा सम्मान था जिसे उन्होंने हमेशा दिल से लगाए रखा, वो था लोगों का प्यार, श्रोताओं का प्यार।

भाइयों बहनों, लता जी की आवाज में प्रेम कभी बहुत शोर नहीं किया, वो धीरे धीरे दिल में उतरता गया। और शायद यही वजह है कि उनके रोमांटिक गीत आज भी उतने ही ताजे लगते हैं। लता जी को क्रिकेट से भी खास लगाव था, संगीत के अलावा उनका अपना निजी संसार था, अपने भाई बहनों के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में सामाजिक कार्यों से भी जुड़ाव रखा और संगीत निर्देशन भी किया, यानी जिस कलाकार को दुनिया सिर्फ गायिका के रूप में जानती है उसके भीतर एक संगीतकार भी मौजूद था, एक सामाजिक व्यक्तित्व भी मौजूद था। उनके विभिन्न रंग थे, विभिन्न

0: भाइयों बहनों, लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज वो आज भी हमारे बीच है, रेडियो पर, फिल्मों में, पुरानी यादों में और हमारी जिंदगी के उन पलों में जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। लता जी की आवाज शायद इसीलिए अमर है क्योंकि उसमें सिर्फ सुर नहीं थे, उसमें भावनाएं थी, उसमें जिंदगी थी और सबसे बड़ी बात, उसमें भारत की कई पीढ़ियों की यादें थी।
1: अच्छा,

तो भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम से हम चलते हैं। आज का ये विशेष जोहार पलामू कार्यक्रम बस इतना ही। लता मंगेशकर जी की जयंती पर उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट सैकत चटर्जी। कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक थे संतोष कुमार और प्रस्तुतकर्ता थे प्रशांत गौरव। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जोहार पलामू का इस विशेष कार्यक्रम सुनते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब तुरंत हम जुड़ रहे हैं हमारे अगले कार्यक्रम से, जो प्रायोजित कार्यक्रम है और नाम है उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
2: जी।
3: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
3: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
2: जी।
3: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
2: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
3: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
2: श्रोताओं इसका उत्तर है, थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
3: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
3: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
2: जी,
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
2: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
4: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
5: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
4: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
5: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
4: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
5: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
4: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
5: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
4: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
5: आज मैं आ गया हूँ,
6: इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
4: उसने सोचा,
6: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
4: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
7: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है,
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या क्या मसला
5: है। ठीक है, चलो भगवान सब ठीक
2: हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
7: कैसे से बचा?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जांबाज योद्धा को जन्म दिया।
7: अरे वो हमारा गौरव है,
6: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
5: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
6: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा
8: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
4: भारत माता की
8: जय,
4: भारत माता की
8: जय।
9: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
10: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
9: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
10: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
9: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
4: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले,
10: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धनसिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
9: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
0: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
0: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
1: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
0: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
1: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
0: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
1: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ कि वो जल्दी से सहायता दे।
2: पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो।
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
4: ए सुनो, रुको
6: यहीं पे।
4: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली, आया गौर काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
5: जिंदा है। अरे बहुत खुशी
6: है बेटा।
5: हाँ, जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना,
8: अर्शद,
7: सौम्या,
2: प्रसून
7: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार
6: दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग की कड़ी संख्या 1380। आइए अब जुड़ते हैं हमारे

दिल्ली केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी वो अंग्रेजी समाचार। उसके बाद मुंबई के विविध भारती केंद्र से सुनेंगे कई कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।

प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: के।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है वो,
1: जी
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा
1: बात है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब,
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
1: अद्भुत
0: बात है
1: ये, मुझे आज भी है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था
0: कि सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो। जैसे
1: क्या

0: दौर था, क्या
1: जैसे,
0: लोग थे।
1: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
0: जी।
1: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
0: जी
1: ये दौर में फर्क हो गया।
0: जी जी
1: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
0: जी जी जी
1: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
0: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
1: बड़ी खूबसूरत। हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
0: अच्छा।
1: उन्होंने बुला लिया और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
0: ये म्यूजिशियंस थे,
1: ये उनके अरेंजर थे।
0: अच्छा।
1: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव। भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया 10:15 बजे।
0: जी।
1: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
0: वो छोटे कद के थे।
1: पहली दफा देखा उनको।
0: जी।
1: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
0: जी।
1: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, शामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे। कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी शामराव म्यूजिक सुनाओ। फिर चुप।
0: अरे
1: ये मैं, हम सोच रहे हैं नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है। केसी बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए। मैं यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली। म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अभी सुनाओगे ना सुना। अब सब तुम्हारी आवाज, अब सुनाएंगे म्यूजिक। और उसके बाद म्यूजिक शुरू
0: हुआ। ये प्यार था, ये
1: म्यूजिक शुरू हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ये पहली याद थी उनके साथ।
0: क्या बात है,
1: ऐसा एटमोसफियर। आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
0: तब बजाएंगे,
1: तब हम बजाएंगे।
0: गजब गजब।
1: तो ये एटमोसफियर था
0: जी। उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
1: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए।
0: अच्छा।
1: याद नहीं।
0: एस जी बर्मन,
1: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
0: उनकी यादें माटी है।
1: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था।
0: जी जी।
1: पंचम जी का इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी।
0: हाँ।
1: शायद गाइड होगी।
0: ओके।
1: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया। बीच में खड़े होके, मैं वो स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने। तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
0: अरे गजब।
1: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मलोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए।
0: अरे बाप रे,
1: जैसा उत्तम बजा रहा है।
0: गजब।
1: यूनुस जी, मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में। सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
0: ओ।
1: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया।
0: वाह।
1: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
0: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और अपनी धुन के पक्के।
1: बहुत जबरदस्त।
0: कुछ और घटना याद आती
1: है? और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरली ने छोड़ दिया था
0: जी,
1: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आमतौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
0: अच्छा।
1: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
0: जी।
1: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको काम करना है इसका, गोल्डी का। बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा,

0: क्या सोच रहे हो? मैं कहा, दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा, दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं कहा, दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी में कभी नहीं लेता। मैंने कहा, आपके साथ बहुत बजाया, मासूम लोरी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा, दादा मैं नहीं कर पाऊँ। यूनस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा,
1: हाँ
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
1: जी जी
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब बालो।
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया,
1: जी
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लहरी का ऑफर आया, अन्नू मेलक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा। मदन जी का ऑफर आया मुझे,
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी
0: मैं
1: दूसरे म्यूजिशियन का
0: उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ उनके,
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट ऐसे अरेंजर में नहीं लिया। मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली,
1: क्या बात है।
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे
0: ऐसे
1: बाद में भी,
0: म्यूजिशियन बजाता
1: दादा
0: रहा।
1: के लिए भी बजाते
0: हाँ
1: रहे
0: हाँ दादा के। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था, फिर
1: जी।
0: वो अनिल अरुण आ गए थे, तो
1: हाँ।
0: फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सका। उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका उनके साथ।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: बहुत
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेड हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा,
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, ये आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, मुके सर 1-2 दिया, उन्होंने म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे।
0: जी जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरू हुआ, डेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ आए इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी।
1: लगातार भाग,
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे

0: वाइफ के साथ पास रहता था घर में,
1: हाँ
0: बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था।
1: जी हाँ।
0: तो केसरी जी, भूपी जी, मारोरी जी और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता
0: ज्यादा
1: था।
0: गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
1: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे इनमें?
0: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
1: अच्छा
0: भज्जी एक वकील थे, विदेशन थे, वो
1: हाँ,
0: भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
1: भूपिंदर सिंह जी
0: हाँ,
1: जो
0: और
1: बहुत बड़े गायक भी थे और
0: बहुत
1: गिटारिस्ट थे
0: गिटार, और केसरी जी,
1: जी
0: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था। रात को साथ में बैठना
1: जी
0: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था,
1: जी
0: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको। तो ये
1: पार्टियां वो लोग करेंगे और
0: पार्टियां वो लोग
1: छोड़ेंगे आप।
0: करेंगे क्योंकि ये सब दोस्त है, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
1: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे? अच्छा
0: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे।
1: जी
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि
1: आप आपकी भी
0: बहुत,
1: थी बदमाशियां?
0: हाँ नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या है, म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
1: जी
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है। एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है
0: जी, मैंने, राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए,
1: जी।
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
0: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे, ऐसा म्यूजिक पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी
0: बहुत
1: बिताया,
0: मेरा एक पाँव मद्रास में, एक पाँव बॉम्बे में।
1: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
1: आई।
0: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था,
1: वाह,
0: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही चलते थे, बहुत
1: लैंग्वेज की
0: ट्रैवल,
1: प्रॉब्लम,
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है। इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है,
0: बहुत,
1: तो कुछ यादें
0: मैं
1: बताइए।
0: आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है,
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम A to Z।
1: वाह
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
1: वाह,
0: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, R.D. बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले।
1: जी
0: वहां पे अरेंजर की जगह है,
1: जी
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे,
1: बिल्कुल,
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है।
1: सारा
0: इलैयाराजा
1: काम
0: क्या,
1: खुद करेंगे,
0: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा म्यूजिक रहे हो।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है
0: हाँ, सुरेश वाड़कर,
1: जी, आपने बजाया
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: क्लियर ऐसे की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी
1: तब मुझे बुलाया था।

0: जी
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी, मैं नहीं
0: आपने मना कर दिया।
1: ना नहीं कर पाया आपके साथ। नहीं साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री,
0: जी
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नैयर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भाई ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है,
0: जी जी
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी
1: तो नैयर साहब इज द डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नैयर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपये लेते हैं, 5000 रुपये दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मरोड़ी जी तो हमेशा उनसे किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपये डाल दिया, 100 रुपये डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नैयर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नैयर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नैयर साहब की शैली,
1: पूरी नैयर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नैयर साहब नैयर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नैयर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नैयर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नैयर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ।
0: जी जी,
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है कि टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीक दान,
1: वो पीक दान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूं। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
1: टेलीफिल्म है।
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली,
0: मदन जी
1: के बड़े लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको इसको,
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी है।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी,
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
0: दो से ज्यादा नहीं
1: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 1-1 बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
1: हाँ, मतलब समझिए, एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम

0: उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
1: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
0: ये जगजीत की जो फिल्में के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं,
1: बिल्कुल।
0: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो
1: अब
0: मेरी की हुई है सारी।
1: आशा भोसले और गुलाम अली,
0: हाँ, वो सारी मेरी की हुई है।
1: अरे क्या बात है। तो
0: जी,
1: मेरा जो गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
0: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह।
0: आप सुन लीजिए उसको।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में सात सात गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
0: क्या
1: है
0: होता है? यस
1: ना, तो
0: यस,
1: ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
0: देखिए जी, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया,
1: जी
0: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू,
1: शंकर शंभू कव्वाल सर,
0: जो कव्वाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
1: गजब। ये किस साल की बात होगी?
0: सिक्सटीज की होगी।
1: जी जी
0: हाँ, सिक्सटीज, 65 मोस्टली,
1: जी
0: 65,
1: जी
0: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था, तो पहला उनका। उसके बाद में मैं, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया, तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, मियान बाली, ऐसे काफी लोग, छोटे छोटे म्यूजिक थे, सब ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया।
1: अरेंजर के तौर
0: हाँ,
1: पर।
0: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
1: जी
0: दो गानों का अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह, दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया, तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
1: अरे अरे,
0: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गया। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं हाँ जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपये दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपये ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
1: जी जी
0: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
1: बढ़ाने शुरू किए
0: बढ़ाने शुरू किए।
1: और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम
0: तो
1: शामिल हैं।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया,
1: जी
0: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
1: हाँ
0: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हार्मोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया।
1: जी
0: अब पूरे म्यूजिशंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता, तो आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
1: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
0: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
1: जी
0: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
1: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई।
0: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है,
1: अच्छा।
0: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या, जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
1: गजब,
0: फिल्म हम आपके हैं कौन,
1: क्या बात है।
0: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
1: ये भी
0: ये।
1: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।

0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहाँ हिलता नहीं था। तो
1: जी
0: इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट है वो मैंने आपको बताई है।
1: जी जी
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे।
1: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड
0: मदन साहब
1: म्यूजिक,
0: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे।
1: जी
0: नौशाद साहब हो गए, शंकर जयकिशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे। तो अरेंजर खाली लिखता था,
1: अच्छा अच्छा
0: अरेंजर
1: अच्छा
0: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डाला, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा, या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहां इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ,
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक
1: या
0: सारा मेरा होता था ना।
1: जी,
0: तो
1: और
0: मैंने
1: वो
0: अभी,
1: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे,
0: हाँ,
1: उनका चलन क्या होगा, वो
0: जैसे
1: सब
0: अभी
1: आप तय
0: मदन
1: करते
0: साहब
1: थे।
0: क्या रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया,
1: जी
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए, जब
1: जी
0: उत्तम जगदीश थे, तो
1: जी जी जी
0: सारे म्यूजिक जो है, हर चीज, इंटरलूड वगैरह, सब मेरा बना हुआ है।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
0: जी
1: जिस तरह से चलती है, और
0: जी
1: वो तो वो सारा आपका तैयार किया
0: सारा मेरा बनाया हुआ है।
1: जी।
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था, तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस
1: हाँ
0: टाइम।
1: वही बात है,
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: बहुत लोगों ने यूज किया वो
1: वो
0: इस
1: एक
0: टाइम।
1: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है।
0: बिल्कुल।

0: जहाँ
1: या वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
0: हाँ
1: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: मोहब्बत इस गजल इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी। राजेश जोहरी ने इसे लिखा, भूपिंदर सिंह का संगीत और आवाजें भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में नक्श लायलपुरी का ही कलाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आप आपको सुनवाते हैं सईद राही का कलाम। मधुरानी के संगीत से सजा है, पिनाज मेसानी ने इसे अपनी आवाज दी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

दिल्ली सिक्स का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज और एस सुजाता मजुमदार श्रद्धा पंडित की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, करसन सागरथिया और साथियों की आवाजें, महबूब के बोल, स्माइल दरबार का संगीत।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प

0: बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
2: हुआ।
1: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
4: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
3: इंतजार कीजिए।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

तू दिल दे दे इस एल्बम से आप सुन रहे थे पेनाज की आवाज में गीत जिसे लिखा राजू शौरी ने, रहमान राजन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सिल्क रूट। इस एल्बम से मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजों में उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: सिल्क रूट बूंदें, इस एल्बम से आप सुन रहे थे मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल को।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और अब सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में रूप जौहरी के बोल, कमाल खान का ही संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों की जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलो 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया।

0: किया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन के अवसर पर हम सुनवा रहे हैं उन्हीं के अभिनीत फिल्मों से गीत।

शान की आवाज में सांवरिया फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, समीर के बोल, मोंटी शर्मा का संगीत। आइए अब सुनते हैं वेकअप सिड फिल्म से यह अगला गीत, क्लिंटन सर्जो, डोमिनिक सर्जो और लॉय मेंडोसा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है।

0: अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म के गीत का गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रॉकस्टार फिल्म का ये गीत सुनिए, मोहित चौहान की आवाज है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आपने सुना जग्गा जासूस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: एनिमल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन रामेश्वर का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती में कौन आ रहे हैं ये तो हमें आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी फिल्म का अगला गीत आपको सुनवाने वाले हैं मैनी दयाल शेफाली अलविज का, की आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। और हाँ, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बैन दयाल और शेफाली की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बेनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे रॉकेट सिंह फिल्म से गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में शेखर अस्तित्व के बोल आपने सुने। विक्रम मोंटोरसे ने इसे संगीत से सजाया। संजू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल में अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, तमाशा फिल्म के इस गीत में।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, जनगणना के लिए समय निकालकर जरूर ले भाग। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का दावा, 13 करोड़ से अधिक नाम काटे गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप। धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 2 मामले, 1 मरीज की मौत। रांची से जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। सोनारे बिंदल मॉल फायरिंग मामले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। रायपुर से 4 साजिशकर्ता गिरफ्तार। और सीआईएससीई नेशनल कैरम चैंपियनशिप में धनबाद की सुमेधा स्तुति को मिला स्वर्ण। अंडर 19 वर्ग में दोनों खिलाड़ी सहित बिहार झारखंड की टीम पहले स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने निर्वाचन आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के तहत देश भर में करीब 13 करोड़ नाम हटाए जा रहे हैं। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में 13 करोड़ से अधिक नामों के ड्राफ्ट रोल से बाहर होने की बात सामने आई है।
1: पूरे देश में एसआईआर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम थे। इसीलिए हमने कहा देश में पहली बार लोकतंत्र पर खतरे की घंटी बज रही है, यह कभी इन 76 वर्षों में देखने को नहीं मिला जो आज हम सबको देखने को मिला है। इस कारण पूरे देश में
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और भारत को देश विदेश में बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी निशाना साधा।
2: एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपने के बाद मानो उनको लगातार राहुल गांधी जी बड़ा कोई भारतीय पहली घटना नहीं है। देश के राहुल गांधी देश को किस प्रकार से बदनाम करने की या भारत को कैसे कमतर आंकने उन्होंने कोशिश की, वो सर्वे देखते हैं। विदेश में भी जाकर के भारत की छवि को कैसे धूमिल करना। देश के अंदर भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भी तब से कांग्रेस पार्टी मोदी जी के विरोध में।
0: धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 1 बच्चे की मौत और 1 अन्य मरीज में संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रांची से विक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम आज धनबाद जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बीमारी की रोकथाम के उपायों की समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर और लार्वा नाशी दवाओं के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार दूसरे संक्रमित बच्चे का धनबाद के SNMMCH में इलाज चल रहा है और इसके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। CCL की महत्वाकांक्षी CSR पहल CCL विद्यासारथी 2026 का रांची में शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 400 चयनित विद्यार्थियों को JEE और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए 2 वर्षों तक निशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। कमांड क्षेत्र के 10 DAV प्रशिक्षण केंद्रों पर संचालित इस कार्यक्रम के लिए रांची केंद्र से 60 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित बिंदल मॉल फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चारों फायरिंग की साजिश में शामिल थे, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर गोली चलाने वालों में शामिल नहीं थे। पुलिस ने चारों को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया। घटना के बाद आरोपियों की तलाश में SIT ने बंगाल और आसपास के इलाकों में छापेमारी की थी तथा CCTV फुटेज खंगाले। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने आज सरायकेला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू ने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन वेयरहाउस सह फिजियोथेरेपी केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर जमा कूड़े कचड़े को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल

इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

0: निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज का विषय है मेक इन इंडिया। पिछले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी है।
1: जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
0: मेक इन इंडिया को लेकर पूर्वी सिंहभूम के व्यवसायियों ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में सक्रियता बढ़ने और नए नियम लागू होने से छोटे उद्योगों को कारोबार करने में कई तरह की सुविधाएं मिली हैं।
2: नमस्कार, मैं हर्ष बाकरेवाल। हमारा उद्योग है एमएसएमई को अलग से क्लस्टर करने से हम लोग को एक बहुत फायदा हुआ है। काफी सारी चीजें डिफरेंशिएट हुई है, काफी रूल्स आए हैं जिसके अंडर हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग को इजी गोइंग बिजनेस हो सके।
3: हमें सबसे बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिला कि हमें टाइमली पेमेंट मिलता है।
0: पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत पतरातू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान के लिए विशेष आकलन शिविर लगाए जाएंगे। गुड्डा में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार और आनंद झा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
4: 23 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किए और लगभग 85,920 रुपए कैश, जो लैपटॉप है, फोन है, वो सब बरामद किए। सभी लोग जो पकड़ाए ये मतलब विक्टिम है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है।
0: आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के शुरुआती सत्र के दौरान भारी गिरावट देखी गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 963 अंक गिरकर 72,932 पर आ गया, जबकि निफ्टी 306 अंक गिरकर 22,834 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। धनबाद के कार्मिल स्कूल की सुमेधा तिर्की और स्तुति गुप्ता ने केरल में आयोजित 7वीं CISCE नेशनल कैरम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 19 बालिका वर्ग में दोनों खिलाड़ियों सहित बिहार झारखंड टीम ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने प्रतियोगिता में लगातार 6 मुकाबले जीतकर अपना प्रदर्शन कायम रखा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, जनगणना के लिए समय निकालकर जरूर लें भाग। SIR को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का दावा, 13 करोड़ से अधिक नाम काटे गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप। धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 2 मामले, 1 मरीज की मौत। रांची से जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। सोनारी बिंदल मॉल फायरिंग मामले में SIT को मिली बड़ी सफलता। रायपुर से 4 साजिशकर्ता गिरफ्तार। और CISCE नेशनल कैरम चैंपियनशिप में धनबाद की सुमेधा स्तुति को मिला स्वर्ण। अंडर 19 वर्ग में दोनों खिलाड़ी सहित बिहार झारखंड की टीम पहले स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। तो बस उनको देखते रह जाते और सिर्फ उनके चरण स्पर्श कर लेते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलने का अवसर मिलता तो शायद ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने शब्दों की नहीं सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है, और मेरी श्रद्धा का सबसे सच्चा शब्द होता धन्यवाद। लता जी, कितनी खूबसूरती से आपने अपने भावों को बयान किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने मिलता तो हम कुछ नहीं कहते, केवल उन्हें नमन कहते, क्योंकि कुछ कह ही नहीं पाते।
5: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस इबारत की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के अमर गीतों और धुनों को किसी जीवित एहसास की तरह बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। आजारी परदेसी से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक के बोल महज पंक्तियां

नहीं बल्कि दो प्रेमियों के बीच संवाद और भावनाओं की धड़कन बन जाते हैं। आवाज की तलाश को संगीत की एक ऐसी रूमानी यात्रा यहाँ बनाया गया है, जहाँ कल्पना और पुरानी यादें मिलकर एक जादुई और नॉस्टैल्जिक माहौल रच देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की इबारत के शब्दों में लता दीदी के इतने सारे गीत बन रहे हैं कि लिस्ट बनाते बनाते हम थक जाएंगे। इसने मन में ही सोच लिया है कि सारा गीत और पहला गीत ही हमारे मन का हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह से जब खुद को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे मन की हो जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं थी, एक एहसास थी जिसने पीढ़ियों के दिलों को छुआ और भारतीय संगीत को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। आज भी उनकी मधुर आवाज हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है और हमेशा गूंजती रहेगी। लता जी को सादर नमन। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, लेकिन जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका साथ हमें कार्यक्रम में मिलता रहे तो मजा दुगुना हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताना है कि संगीत किसका है और फिल्म का नाम।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलने का मौका मुझे मिलता, मैं तो हल्का बीकानेर होकर देखती रहती, मेरे मुंह से शायद ही कोई शब्द निकलते, बस यही सोचती कि साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन करें, इतना साधारण व्यक्तित्व और इतनी अद्भुत कला। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी को एक बार जयपुर आने का प्रोग्राम था, एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी थी, जब पता चला कि लता जी आ रही हैं तो इन्होंने हमें भी घर से बुला लिया, तब साक्षात सुर साम्राज्ञी के दर्शन हुए, उनकी वो मुस्कान आज भी याद है। तो भाई कुछ चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें देखा, इनमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा इन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विविध भारती एक है, एक विविध भारती एक ही लता मंगेशकर। आएगा आने वाला गीत से हिट हुई लता मंगेशकर का लगभग हर गीत अनमोल है, इसलिए 6 दशकों से अधिक के लंबे सुरीले सफर में कई पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। हम स्त्रियों के सुख दुख के हर क्षण के गीत हैं इनके गीत कोश में, शायद इसलिए लता जी के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाना आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है, सब एक से बढ़कर एक। और आगे इन्होंने कई गीतों के बारे में बात की है और उससे संबंधित बातें लिखी हैं। हालांकि बहुत से साथियों के कमेंट हैं इसलिए हम इनके कमेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भारत में जैसे लता जी की जादुई आवाज ने गीतों के मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। उनके स्वर यात्रा में प्रेम है, विरह है, शरारत है, इंतजार है और जिंदगी के अनगिनत रंग भी हैं। उनकी आवाज की मिठास और सादगी ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और हिंदी फिल्म संगीत को एक अमिट पहचान दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे साथी ने। और कह रही है हमारे साथी कि आज सुबह से खूबसूरत गीतों का इंतजार रहेगा, सुबह से रात तक रेडियो पर एक ही आवाज गूंजती है, स्वर कोकिला लता जी संगीत का पर्याय है, वो कोई भी गीत गाए मन मोह लेता है। विविध भारती पर कई गीत पहली बार सुने और बेहद ही पसंद आए, लता जी को सादर नमन। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सबकी सरस्वती माँ की याद का दिन है, हमारे देश का गौरव, आन बान और शान है लता जी, उनके गाए हुए गीत हमारी विरासत है, आज जो भी गीत सुनवाएंगे बड़े ही प्यारे लगेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के गद्यांश में एक बात जो इशारा कर रही है, आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में लता जी के स्वर से आज की गीतों की महफिल रोशन होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गायकी के पटल पर लता जी का नाम एक अलग ही अक्षर की तरह लिखा गया है। वे सिर्फ लता जी नहीं बुद्ध सरस्वती हैं, हम उन्हें गायन की देवी की तरह पुकारते आए हैं, वे हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से आसमान तक हम सबके हृदय पर विराजमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के लंबे इंतजार के बाद एक ही गाना याद आ रहा है कि तुम संग नेह लगाकर हार गई सजना। कोकिल कंठी सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी स्वयं सुर साध्वी साधना रत्न स्वयं सरस्वती की साक्षात मूर्त के रूप में अविरत हो अंतर ध्यान हो गई। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज बेटी के रूप में लता जी इस दुनिया में आई थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की संगीत यात्रा में लता जी नाम मां शारदा की तरह वंदनीय है, हर आयु वर्ग में जीवन की हर परिस्थिति में उनके गीत अपने से लगते हैं, बचपन के लिए लोरियां, युवा काल के लिए प्रेम गीत, विरह गीत और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत, जिंदगी के विविध रंगों को लता जी ने अपनी देवी आवाज से एक रंगोली की तरह सजा दिया है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही तो भाई एक गीत तो सुनना बनता ही है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत किसने लिखा।

0: परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान, वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे मधुमति फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलील चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजादी के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं इबारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है, और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज, साथ में मोहम्मद रफी की आवाज में ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोशन का संगीत, साहिल लुधियानवी की बोल, सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के मौके पर लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो केवल एक नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जज्बात का नाम है। हिंदुस्तान की आवाज है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द है बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जादुई जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज से शुरू हुआ सफर तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफर पर निकल पड़ता है जहां प्यार भी है, इंतजार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई, जब प्यार प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई, ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही हैं, तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि भाई आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या और लगातार 365 दिन उनकी आवाज में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोजाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफर पे जाती हूँ तो अपनी पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है। घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूँ मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की, उनकी आवाज तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा एक सी रही। उनको बहुत ज्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी सादगी अच्छी लगती है, हमेशा सफेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद है, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता, ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज हमारे कानों को नहीं हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ हैं उनकी आवाज के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का मन करता है। वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है। तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

भाई यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए भी कि हमसे ना पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज़ आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते इत्तेफाक रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

0: ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी।
1: न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में

0: बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
1: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
1: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू, मुरब्बा, जूस, बर्फी भी, यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कट और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इसे तकनीकी मुद्दा बताते हुए केंद्र और आरबीआई से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। रांची के हरमो हाउसिंग कॉलोनी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्र नायक की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नेताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की गहरी साजिश बताते हुए दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है।
1: ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी प्रतिमा के साथ इस तरह का व्यवहार, कहीं ना कहीं ये साजिश की बू आती है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एफआईआर दर्ज कराया है। यहाँ के थाना प्रभारी से मांग किया है कि अविलंब वैसे लोगों का पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज खंगाल के अरेस्ट करके जेल भेजे और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
0: रांची में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता की मांग करते हुए नारेबाजी की। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा मुख्य बाजार में जर्जर और जल जमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन लंबे समय से इस समस्या की अनदेखी कर रहा है, जिससे आगामी दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होगी। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर खनिज संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस और झामुमो पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों की माइनिंग आय नहीं रोक रहा है और कुल राजस्व का 90% हिस्सा राज्यों को ही मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कोड़ा ने राज्य सरकार से खनिज आय का हिसाब मांगा।
2: केवल झारखंड में ही लागू होगा ऐसे नहीं है, एमएमडीआर पूरा देश में लागू होगा, तो फिर ये इतना चिंता केवल झारखंड को ही क्यों है? झारखंड अपना खामियों को दूर करना नहीं चाहता है। आज यहाँ पर बंद पड़े खदान पर अगर खुलवा दिया जाए तो यहाँ के नौजवान लोगों को उड़ीसा जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। इसी चीज को जो नाकामी को छुपाने के लिए आप केंद्र सरकार के ऊपर में ठीकरा फोड़ रहा है।
0: हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत जलौंद गांव में वन विभाग ने अवैध आरा मिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ मोहित बंसल के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में मिल को जब्त करते हुए भारी मात्रा में अवैध लकड़ी के गोले और पटरे बरामद किए गए हैं। वन विभाग ने मौके से 3 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के बरही और चौपारण में बराकर नदी का जलस्तर बढ़ने से डीवीसी की 56 मौजा जमीन दोबारा जलमग्न हो गई है। इससे विस्थापित किसानों के

खेतों में पानी भर गया है, जिससे रबी फसल की बुआई और पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित ग्रामीण तिलैया डैम का फाटक खोलकर जलस्तर कम करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक रांची, कोल्हान और संथाल परगना सहित विभिन्न हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज द्वितीय टी20 मैच के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष चर्चा की गई। दर्शकों को दोपहर 3 बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: हेल्दी नमस्कार
1: बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए।
2: हाँ, जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या मतलब कितना ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और देखो ना आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे दिवस हैं, मैं नेहा और हमारे श्रोताओं आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य इसके संतुलन की। साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं। आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव इसके बारे में बात करेंगे और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी है तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत।
2: जी बिल्कुल,

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ ही गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सच भारत की युवा चेतना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
1: किसका?
0: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी।

0: अमावस की रात, सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
1: दीपावली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
2: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
1: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थीं। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था, और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती, और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी। क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
3: आज तो दिवाली है।
1: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
1: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
3: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
1: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी

0: में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जाफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शवे रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा आपको इस सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।

0: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: अभी पर ये कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
2: बिल्कुल, ऐसा मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
1: और भी क्या सुनेंगे?
2: एक गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को। और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि आज क्या है,
4: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
3: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि, मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना
4: की आवाज में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना जिन्होंने उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
3: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं कि बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।
4: बिल्कुल, और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी। नेहा, उनकी आवाज कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, उसमें एक गाना तो जरूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं जरूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
3: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया, तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
4: बिल्कुल, और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों के चुनाव हम लोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त थे उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
3: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
4: बिल्कुल,

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हा? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी, इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें ही तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे पसंद
1: भाई
0: के।
1: नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में हैं और सूचना फटाफट हम तक पहुंचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुंचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई, जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार।

0: अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
2: अगर तुम मिल जाओ,
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
5: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: बहुत जरूरी है ये।
4: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
5: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
4: और रेबीज जो खास तौर पर संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
5: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
4: बिल्कुल,
5: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
4: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, वो सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं। जी
1: लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: हाँ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर ये भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपने निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जिसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहां वहां ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें। बिल्कुल।
0: और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पे भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझकर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य।

0: है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल, और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे

0: पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए। राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मोदुर पुलाव के साथ, है ना?
1: तो ये तो बिल्कुल
0: इतनी
1: कंप्लीट खाली हो
0: खुशबूदार
1: गई है
0: है
1: ना,
0: ना।
1: और खुशबूदार,
0: हाँ
1: मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
0: खुशबू
1: खुशबू
0: आने
1: से आ रही
0: लगी
1: है।
0: है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है।
1: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
0: हाँ।

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा महेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें पीसीओडी है, पीसीओएस है
0: जी,
1: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं
0: जी, जी,
1: हार्मोनल
0: जी,
1: बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है IVF
0: जी,
1: ये क्या है इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
0: जरूर।
1: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
0: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
1: अच्छा।
0: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो पीसीओडी जो है या पीसीओएस या अभी पीएमओएस हम जो बोलते हैं, वो काफी बढ़ चुका है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है। पीसीओडी में यह है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां, मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है।
1: अच्छा,
0: ये पहले नहीं था। हाँ। तो ये भी अभी मतलब जो
1: बड़ी
0: समस्या है, तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या पीसीओडी, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है, तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं। तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है तो शी शुड टेक हेल्प। एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है, या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
0: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं, तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में। और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका। अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए। तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है, बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस, जैसे थायराइड हो जाना, तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब। तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना।

0: होना चाहिए। और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इशू है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
1: संभावना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए,
0: जरूर
1: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए।
0: डेफिनेटली
1: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
0: नहीं,
1: है,
0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है।
1: जी जी।
0: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है। यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं। जो वर्किंग वीमेन हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं। तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले।
0: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट।
1: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए?
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
1: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में माहवारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी।
2: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो सकता, निकल पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
2: यस। तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
2: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है। तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
2: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसीओ होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैनॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन।

0: ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है, तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही जरूरी
1: है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खासतौर से गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है अभी पीसीओडी या पीसीओ

0: पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं. तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है.
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिला को
0: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं है, और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं. आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है. तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला मां नहीं बन सकती, ऐसी कोई धारणा?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से. इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में. तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है. यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं. ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
1: बदलते हैं.
0: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन.
1: बिल्कुल.
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10.
1: अच्छा
0: जी,
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना करते हैं या देखना पसंद करते हैं.
0: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
1: हाँ.
0: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है. और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रीट होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन. तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है.
1: अच्छा.
0: इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है. और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं. तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
1: नहीं होता है,
0: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है. और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है.

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला,
0: मिला नहीं है।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज्यादा कार्ब्स रहते हैं, उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं। तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए।

0: तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलॉन्ग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है वो ना हो। तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए। और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलॉन्ग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चीला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को नहीं होने के लिए।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
0: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी। बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
1: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान कर
0: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना, तो आपका जो सटाइटी यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
1: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
0: डेफिनेटली, मतलब, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है।
1: और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
0: 100%
1: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
0: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है, प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: अच्छा। सो इट्स अलग अलग शैली में अलग,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशियो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है।
1: जी।
0: क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है, तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: तो जल्दी
1: होने लगता है, तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेकर बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मींस अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मींस देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं, लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
0: बताते ही हैं,
1: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
1: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है, तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया, फिर मे बी 5-6 महीने नहीं या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली एनीमिक हो जाएगी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है,
0: तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है।
1: काफी बार मदर्स आती हैं
0: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
1: जी जी जी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी है।
1: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
0: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता है जाता होगा ना छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़के तो रोने भी लग जाती है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए, और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
1: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है, यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
0: अलग होती है,
1: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्ची, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर्स लें, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है।

डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर्स लें, अगर पैरासिटामोल काफ़ी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा, जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह कर पाया है। हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है।

0: वैसे तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सर्फेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सर्फेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियल डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI। मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट,
1: जरूरी है। yes. इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं। yes.
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा रक्तस्राव होता है। ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
0: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज, जो ल्यूकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले,
1: अच्छा,
0: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रही हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
0: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके, मिडिल एज से लेके, इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
1: अच्छा, जो एक आम समस्या है।
0: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में। तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी,
0: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
1: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता।
0: जी, बिल्कुल।
1: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये भी एक आम समस्या की,
0: ये बहुत ही आम है,
1: समस्या है। तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
0: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के। तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक। अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर है हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं।
1: अच्छा।
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए। ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है। नो, आपके सिम्टम्स

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबली। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसे आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। सरायकेला खरसावां के चलियामा स्थित रूंगटा माइंस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने उपायुक्त संग बैठक की। हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 माह में एकीकृत कार्य योजना पूरी होगी। रांची के हरमो हाउसिंग कॉलोनी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्र नायक की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोहरदगा में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व रेबीज जागरूकता सप्ताह के तहत सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन ने पशु काटने पर तुरंत साबुन पानी से धोने और एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने की अपील की। बोकारो के चंदन क्यार स्थित छऊ केंद्र में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय सरायकेला छऊ संगीत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्र के समन्वयक डॉ. संजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य इस समृद्ध पारंपरिक नृत्य और मुखौटा कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर इसे संरक्षित रखना है। और रांची के जेसीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। सुरक्षा और ट्रैफिक रूट पर विस्तृत चर्चा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: जिंदगी रूठने और मनाने का सिलसिला है। जिंदगी जानबूझकर रूठने का सिलसिला है और फिर जानबूझकर मान जाने का सिलसिला भी। शायद हमारा मन जानना चाहता है कि किसी को हमारी परवाह है या नहीं। शायद हमारा मन इंतजार करता है कि हम रूठें और कोई आकर हमें मना ले।

कुछ गीतकारों ने जिंदगी के जज्बाती पलों को दे दी है आवाज, वरना हम कैसे कहते अपने मन की बात, हम कैसे करते बयां अपने प्यार को। अल्फाज अपने सही सही मानी बयां नहीं कर पाते, जिंदगी के ये नाजुक लम्हे रहे ही रह जाते।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: मेरे महबूब तुझे
2: मेरी मुहब्बत की पसंद।
0: हम अभी हाजिर हुए

छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं। दोनों संस्करणों को हमने किसी मोड़ पर जोड़ दिया था आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

फिल्म मेरे महबूब, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम नए तराने पुराने कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी अपने दिल को रखे सेहतमंद। साथ ही चर्चा में सुनेंगे घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां। वार्ता में सुनेंगे प्रीति कुमारी को। वार्ता का विषय होगा महिलाएं स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही चर्चा में सुनेंगे धान में कीट प्रबंधन। वार्ता में सुनेंगे प्राकृतिक खेती। वार्ताकार होंगी सुषमा श्रीवास्तव। ग्रामीण सभा कार्यक्रम का समय होगा 6:30 और आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी नवजात बछड़ों की देखरेख। साथ ही आज की बात में सुनेंगे अंतर्वर्ती खेती के लाभ। भेंटवार्ता में सुनेंगे जाड़े की अगेती सब्जी फसली एवं उसकी खेती। वार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और उनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर जिले में आजकल और 7:15 पर विधानसभा समीक्षा सुन सकेंगे रांची केंद्र से। 7:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद की अगली कड़ी सुन पाएंगे और 7:35 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग सुन पाएंगे।

7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम में सुनेंगे एक भेंटवार्ता जिसमें दांतों की रेख रेख पर बातचीत होगी। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सिबल तुल्ला और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम में आप फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट से।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार सुन सकेंगे विविध भारती से। 10:00 का समय होगा स्पेशल प्रोग्राम 20th एडिशंस ऑफ एशियन गेम्स, इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे रात्रि के 10:00। और 10:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में हम पेश करेंगे कुछ फिल्मी नगमे। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। और बहनों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम इस गीत से।

सचमुच बहनों, आज का ये दिन ऐसा ही है। बात मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, शायद कभी ना ख़त्म होने वाली, चाह के भी ना भुलाने वाली, सदा सदा के लिए अजर अमर है हम सभी के दिलों में, हवाओं में, फिजाओं में। जी हाँ बहनों, मैं बातें कर रही हूँ भारतीय संगीत जगत की महानतम पार्श्व गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। उनका स्वर कई युगों तक अजर अमर रहेगा। इस जन्मदिन पर उन्हें याद करना भारतीय संगीत की उस महान परंपरा को याद करना है, जिसमें कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं और संस्कृतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करेगा। लता मंगेशकर जी को जन्मदिन पर शत शत नमन। लता मंगेशकर जी के गायकी में ऐसा जादू था कि दो चाहने वाले दिलों की आवाज़ भी बनी और साज भी, लेकिन दिलों को तो थामना ही होता है, क्योंकि दिल तो होता है बड़ा नाजुक। दिल को कैसे थामें, उसे कैसे मजबूत बनाएं और कैसे उसे स्वस्थ रखा जाए, आइए जानते हैं विस्तार से। तो बहनों, कल यानी 29 सितंबर को विश्व हृदय

हृदय दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। बहनों, हम सभी के जीवन में हमारा जो हृदय है उसका संबंध कितना गहरा है ये हम सभी जानते हैं, और हम कह सकते हैं कि हृदय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। उसे स्वस्थ रखने के लिए, उसे समझने के लिए और उसके बचाव के लिए ही ये जो मनाते हैं हृदय दिवस, ये सभी जागरूक करना है लोगों को। और हमारा हृदय शरीर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, या लगातार रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, हमें जीवन प्रदान करने वाले ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में मदद करता है। इसीलिए हृदय का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। आज की बदलती जीवन शैली में हृदय रोगों का खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं बहनों। एक तो उनकी जीवन शैली, यानी जो अधिक देर तक सोना, अधिक देर से उठना, असमय खान पान, निंद्रा का पूरा नहीं होना, या फिर बहुत अधिक तली भुली चीज़ों का भोजन में शामिल करना, अधिक खट्टा तीता नमकीन वगैरह वगैरह, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, अत्यधिक तनाव, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे कई कारण हो सकते हैं जो हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी हम खाने में उन चीज़ों को शामिल करें जो सुपाच्य हो और जिसके लिए हृदय पर उसका अधिक गहरा असर ना हो, यानी हृदय पर जोर ना हो। आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि लोग तले भुने चीज़ों का प्रयोग अपने खाने में अधिक करते हैं। इतना ही नहीं, उम्र के अनुसार रोज़ नियमित व्यायाम करें, पैदल चलने की आदत डालें, योग करें, ये सभी जो है हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और शारीरिक परिश्रम भी करना आवश्यक होता है। आज अधिकांश हृदय रोग होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज लोग अधिकांश लोग एक ऑफिस में या रूम में बैठ के ही काम करते हैं, जिससे शरीर की गतिविधि ना के बराबर होती है और इससे जो है हृदय वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो तनाव को नज़रअंदाज करना सीखें, यानी तनाव को हावी ना होने दें अपने ऊपर। अपने दिनचर्या भी नियमित करें और पर्याप्त नींद लें। परिवार के साथ समय बिताना भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि परिवार के साथ हंस बोल लेने से हमारी जो तनाव होते हैं वो जो अपने आप दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है आप नियमित रूप से अपने सेहत की जांच करवाते रहें, रक्तचाप की, रक्त शर्करा की इत्यादि इत्यादि समय पर इन सब की जांच होती रहनी चाहिए, जिससे कि आपको समय पर ही जो खतरा होता है रोग होने का या जो संकेत होता है वो उससे आप सावधान हो जाएंगे। तो बीच बीच में समय पर आप ज़रूर अपने जो है शरीर का जांच करवाते रहें, खास करके हृदय संबंधी जो भी जोखिम है वो सभी आप उन्हें अपनाएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार जांच उपचार करवाते रहना चाहिए। या फिर कभी किसी व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द हो, दबाव हो, सांस लेने में कठिनाई हो, अत्यधिक पसीना आ रही हो या चक्कर जैसे लक्षण दिखाई दे, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत अपने चिकित्सीय सलाह लेते रहें। तो श्रोताओं, हृदय की देखभाल किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसे नियमित रूप से जांच पड़ताल होते रहनी चाहिए, देखभाल होती रहनी चाहिए, सचेत रहनी चाहिए। और विश्व हृदय दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि इसे हम बहुत हल्के में ना लें, और ये शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके लिए महत्वपूर्ण ठोस कदम उठानी चाहिए। तो बहनों, उम्मीद है कि आप इस जानकारी से आप भी

0: सचेत हो जाएगी और अपने जो हृदय है उसका ख्याल जरूर रखेंगे। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता महिलाएं स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। वार्ताकार हैं प्रीति कुमारी।
1: सामाजिक और आर्थिक विकास के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तो वह न केवल अपने परिवार को संभालती है बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है। महिला स्वरोजगार का महत्व आर्थिक स्वतंत्रता। स्वरोजगार से महिलाओं की किसी और पर निर्भरता खत्म होती है और वे अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती है। जीवन स्तर में सुधार। महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है जिससे पूरे परिवार का स्तर सुधरता है। समानता और सम्मान। समाज और परिवार में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बराबर का अधिकार मिलता है। कौशल विकास। सिलाई कढ़ाई हस्तशिल्प डेयरी फार्मिंग और डिजिटल बिजनेस बढ़ रही है। समाज कल्याण विभाग ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिले में तेजस्विनी योजनाएं चला रही है। इसके तहत 1000 किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को जोड़ने की योजना है। इसके तहत महिलाओं का कौशल विकास किया जाएगा जिससे कि वे स्वयं का स्वरोजगार खड़ा कर सके। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का अभियान चला रही है। इसके लिए जिला व प्रखंड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए जिले में कई योजनाएं चला रही है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। हुनर की बदौलत महिलाएं स्वरोजगार कर अपने परिवार को शक्ति प्रदान कर रही है। महिलाएं छोटे स्तर से शुरुआत करके अपना सफल करियर बना सकती हैं। हस्तशिल्प और कला। सिलाई बुनाई आभूषण बनाना और मिट्टी के बर्तन। खाद्य प्रसंस्करण अचार पापड़ मसाले उद्योग टिफिन सर्विस। कृषि पशुपालन डेयरी फार्मिंग मुर्गी पालन मशरूम की खेती और जैविक खेती। डिजिटल और ब्यूटी पार्लर बुटीक ऑनलाइन ट्यूशन या रेसलिंग बिजनेस। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए महिलाओं का स्वरोजगार अपनाना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वह न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन देती है बल्कि पूरे समाज और देश की तरक्की में योगदान देती है। महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है बल्कि समाज में सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश कर सकती है। आज के दौर में ऐसे कई बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाएं मौजूद हैं जो महिलाओं को घर बैठे या कम लागत में अपना खुद का काम शुरू करने में मदद करती है। हसोक है तो आप अपने उत्पाद ऑनलाइन या स्थानीय बाजारों में बेच सकती हैं। ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक। एक छोटा सा कोर्स करके आप अपने घर से ही ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकती है। यह हमेशा मांग में रहने वाला बिजनेस है। टिफिन सर्विस। यदि आपको खाना बनाना पसंद है तो आप कामकाजी लोगों या छात्रों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर सकती हैं। अचार पापड़ और मसाले का बिजनेस। घर पर बने शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थों की मांग बड़े शहरों में बहुत अधिक है। ट्यूशन और ऑनलाइन टीचिंग। आप अपने घर पर बच्चों को पढ़ा सकती हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश विदेश के छात्रों को शिक्षा दे सकती हैं। डिजिटल सेवाएं। रेसलिंग जैसे मीशो के जरिए डेटा एंट्री या कंटेंट राइटिंग जैसे काम घर बैठे इंटरनेट की मदद से किए जा सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार कई तरह के लोन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। मुद्रा योजना। इसके तहत महिलाओं को बिना किसी गारंटी के अपना

0: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। स्टैंड अप इंडिया, यह योजना महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रदान करती है। महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के हम उसी क्षमता की बात करें जहां नारी परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद ले। कोई भी समाज तभी सशक्त होगा जब उस समाज में रहने वाले परिवार की महिला सदस्य सशक्त होंगी। महिलाओं के सशक्त होने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। राज्य व केंद्र सरकार जिले में विभिन्न योजनाएं संचालित कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। समूह से जुड़े स्वरोजगार कर रही महिलाएं, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े झारखंड राज्य आजीविका मिशन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में कई योजनाएं चला रही है। समूह से जुड़ी महिलाओं का बैंक खाता खोला गया है। उस राशि का उपयोग कर सखी मंडल की दीदियां स्वरोजगार कर आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनेगी। भारतीय स्टेट बैंक की संस्था महिलाओं को हुनरमंद बनाने की योजनाएं चला रही है, जिससे महिला अपने पसंद का स्वरोजगार खड़ी कर सके। रुचि और स्किल को पहचानें। सबसे पहले तय करें कि आपको किस काम में दिलचस्पी है। ट्रेनिंग लें। यदि ज़रूरत हो तो सरकारी या प्राइवेट संस्थानों से कम अवधि का स्किल ट्रेनिंग कोर्स करें। बजट बनाएं। काम को शुरू करने में कितना खर्च आएगा और पैसा कहाँ से आएगा, बचत या लोन, इसकी योजना बनाएं। मार्केटिंग करें। अपने काम को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए आसपास के लोगों तक पहुंचाएं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतरीन विकल्प यह है कि गृह उद्योग और खाद्य व्यवसाय, अचार, पापड़, मसाले, टिफिन सर्विस, होम बेकरी का काम, हस्तशिल्प और कला, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, जूट के बैग, सिलाई कढ़ाई बुनाई या बुटीक खोलना, ब्यूटी और वेलनेस, ब्यूटी पार्लर, योग क्लासेस या होम बेस्ड थेरेपी सेंटर, शिक्षा और कोचिंग, होम ट्यूशन या ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल और तकनीकी काम, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एंट्री या रेसलिंग जैसे मीशो या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, महिलाएं स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बनें। वार्ताकार थी प्रीति कुमारी। और चलिए बहनों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। नीचे प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में निवेश, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटी एआई तथा सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में क्षमता विकास पर चर्चा हुई। छाबरिया ने निवेश के जरिए राज्य के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा जताई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके स्थित बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण कर इसके पुनर्जीवन के लिए अधिकारियों और एमएमआरआई हैदराबाद के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उन्होंने कूलिंग सिस्टम की खराबी से बंद पड़ी एशिया की इस ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीकों के साथ दोबारा शुरू करने तथा पुरानी मशीनरी को संरक्षित करने के निर्देश दिए। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने झामुमो और कांग्रेस पर एमएमआरडी संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक खनन के लिए यह बदलाव किया गया है। श्री कोड़ा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से आर्थिक लाभ कमाने के लिए सत्तारूढ़ दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और रांची में आज से 7 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने खुद मोर्चा संभाला है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब वे अपने खेतों को लहलहाते फसलों से देखते हैं, और सचमुच अभी उन लोगों को खुश होने का समय है, क्योंकि इस बार धान की फसल अच्छी हुई है और उनका ये फसल यूं ही लहलहाते रहे इसके लिए ज़रूरी है वे समय समय पर निरीक्षण करते रहे अपने खेतों की, और यदि उस पर किसी प्रकार के रोग या कीटों का आक्रमण होता है तो फिर समय रहते उन पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखते ही देखते वे फसलों को नष्ट कर सकते हैं और इससे उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। तो हमारे किसान भाई उन पर नियंत्रण कैसे करें, इस पर हम चलिए बातें करेंगे। सबसे पहले हम बातें करेंगे कुछ मुख्य कीटों की जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं भूरा फुदका कीट, जिसे कि हम ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं। यह कीट हल्के भूरे रंग के होते हैं जो पौधे के निचले भाग या मिट्टी के आसपास पाए जाते हैं। भूरा फुदका कीट पौधे के तने एवं पत्तियों का रस चूसते हैं। प्रभावित पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर काले रंग के फफूंद नजर आते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा आती है और पौधे सूखने लगते हैं। इस कीट का प्रकोप रोपाई के 80 से 90 दिनों के बाद दिखाई देने लगती है। बानियों में दाने भरने के समय ये दिखाई पड़ते हैं। इससे प्रभावित पौधे तेजी से सूखने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पैदावार में कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? नियमित अंतराल पर फसल का निरीक्षण करते रहें, कीट की जो उपस्थिति है उसकी माप करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, कीट का प्रकोप उसमें कम होगा। यदि वे खरपतवार अधिक होंगे तो कीट का प्रकोप भी अधिक होगा। खेतों को अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे भी कीट में वृद्धि हो सकती है। कीटनाशक दवाओं को पौधे के निचले भाग में ही छिड़काव करें, ऊपरी में नहीं, इससे जो है दानों को क्षति होती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एसिडा प्रीमिट 20% और SP 20 से 40 ग्राम प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। इमिडा क्लोप्रिड का 17.8 और SL 40 से 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ खेतों में छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम बातें करेंगे पत्ती लपेटक कीट की, जिसे लीफ फोल्डर भी कहते हैं। यह कीट पीले से हरे रंग के भी हो सकते हैं। समूह में धान की पत्तियों पर अंडे देते हैं, जिससे सुंडियाँ निकलती है। पत्तियों के मुलायम हिस्सों को खाकर ये पत्तियों को किनारे से मुड़ने लगते हैं। पत्तियों को अंदर से खुरच कर खाते हैं और उनका रस चूस जाते हैं, जिससे पत्तियां सफ़ेद हो जाती है। इसके फलस्वरूप पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है और पौधे का विकास रुक जाता है और अंत में पौधा कमज़ोर होकर नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय रहते कीटों के अंडों को समूल नष्ट कर दें। खेत में खरपतवारों पर नियंत्रण करें, जिससे कि कीट का प्रकोप कम हो। थियामेक्थोशम 25% का 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। क्लोरोपायरीफास का 50% और साइपरमेथिन का 5% मिलाकर 250 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें, तो इससे राहत मिलेगी। और यदि हम बातें करें तनाछेदक राइस स्टेम बोरर कहते हैं इसे, पत्तियों और तनों को खाकर उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं इनके कीट, और जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं। कीट के प्रकोप से पौधे में बालियां नहीं निकलती। तनाछेदक की लार्वा धन के टिलर्स में खाते हैं, जिससे कि फसल में डेड हर्ट या सूखने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। धान में ज़्यादा नाइट्रोजन उर्वरक और बुआई में देरी करने के कारण तनाछेदक कीट की संख्या बढ़ सकती है। तो समय पर बुआई करें और एक सीमित मात्रा में नाइट्रोजन और उर्वरक का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों को इसके रोकथाम के लिए चाहिए कि थियामेथोक्सम 1%

0: प्रतिशत और साथ ही क्लोरेंटो ट्राइनिपोल का 5% दवा प्रति एकड़ खेत में 2400 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हुए इसे पानी में मिलाकर धान की फसल पर समान रूप से छिड़काव करें तो इससे राहत मिलेगी। और इसके साथ ही क्लोरोपाइरीफास का 50% और साइपरमेथ्रिन का 5% भी आप मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं प्रति एकड़ खेत में। तो इस प्रकार से इनके छिड़काव करने से भी इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। अब हम बातें करेंगे गंधी बग की। तो खेत में दुर्गंध पैदा होती है। शिशु एवं वयस्क कीट दानों में दूधी अवस्था में रस चूसते हैं, बालियों में दाने नहीं बन पाते और वे पोचे रह जाते हैं। दानों पर किए गए छेदों के चारों ओर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। गंधी बग कीट से प्रभावित अनाज भुरभुरा हो जाते हैं, प्रभावित दानों में छेद के साथ काले रंग के धब्बे हो जाते हैं और गंधी बग के प्रकोप के से जो है खरपतवार, गर्म मौसम और लगातार बारिश अनुकूल रहते हैं तभी इनका प्रकोप बढ़ जाता है। यह कीट आमतौर पर वर्षा आधारित या ऊपरी भूमि वाले धान में अधिक पाए जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एसीफेट 75 SP दवा को 250 से 400 ग्राम प्रति एकड़ पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नीम का तेल 10,000 PPM और 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ खेत में स्प्रे करें। थिया मेथोक्सम का 25% 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ में पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें तो इस पर राहत मिल सकती है। अब हम बातें करेंगे रस चूसक कीट की। तो ये पौधे की कोमल पत्तियों को रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। पत्तियां ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, पौधे में विकास रुक जाता है। तो इसमें भी हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि थिया मेथोक्सम 25% का 200 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा को मिलाकर छिड़काव करें। इसके साथ ही एसिडा प्रीमिड 20% SP प्रति एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में मिलाकर 80 ग्राम दवा को छिड़काव करें। तो इस प्रकार से इन दवाओं के इस्तेमाल से जो प्रभाव है कीटों का वो काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। और हमारे किसान भाइयों को जो सबसे खास बात है कि वे समय समय पर निरीक्षण करते रहें अपने खेतों की फसलों की और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका निराकरण कर लेना चाहिए। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद चलिए हम आपको अब सुनाते हैं वार्ता। वार्ताकार है सुषमा श्रीवास्तव। वार्ता का विषय है प्राकृतिक खेती। तो आइए सुनते हैं वार्ता।
1: प्राकृतिक खेती टिकाऊ खेती। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करता है। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैव कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें अन्य लाभों के अलावा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे टिकाऊ खेती को बल मिलता है। प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमें कि टिकाऊ खेती को भी समझना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लक्ष्य खेती के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है, साथ ही फसल और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना भी है। छोटे पैमाने के कृषक समुदायों के भीतर ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए

टिकाऊ खेती की कई रणनीतियाँ हैं। इस दिशा में विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कार्यक्रम मिशन NMSA तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण में तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्तव में टिकाऊ खेती को अपनाने का मतलब है कि आप बिना पर्यावरण यानी मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित किए और बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को समाप्त किए अपने कार्यों से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बिना बाधित किए किसी विशिष्ट फसल में पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती या प्राकृतिक रूप से खेती करने के क्या लाभ हैं, और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन की समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में टिकाऊ खेती अत्यंत ही लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। टिकाऊ खेती अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। पर्यावरण जीवन का संबल है और हमारी अनेक प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से हमें स्वच्छ वायु, साफ पानी, हरे भरे जंगल, विविध पशु पक्षी और आधारभूत मिट्टी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को उसी अवस्था में अपनी आगामी पीढ़ियों को सौंप दें जिस अवस्था में यह हमारे पुरखों से मिली है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक आधारित खेती होने के कारण पर्यावरण संरक्षण में हमारी पूरी सहायता करती है। प्रदूषण की रोकथाम। टिकाऊ कृषि के फायदे में एक बहुत बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। टिकाऊ खेती में प्रयुक्त होने वाली कृषि अवशेष अपनी उपयोगिता से हमें लाभान्वित करके अंतिम रूप से प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाती है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। उदाहरण स्वरूप, इसमें प्रयुक्त होने वाली सड़ी गली गोबर की खाद, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलकर उसे किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करती। टिकाऊ की कृषि अपनाने से लागत में भी कमी होती है। टिकाऊ खेती की विधियों में कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए इससे खेती की लागत में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशियों एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, जिससे किसान के लाभ में बढ़ोतरी तो होती ही है, समूची मानवता लाभान्वित होती है। जैव विविधता में बढ़ोतरी। टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेतों में अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों को पलने बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे कृषि परिवेश की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ पशुधन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। टिकाऊ खेती की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत खेती एवं पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। ऐसे में पशुधन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, टिकाऊ खेती मत्स्य पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि को प्रोत्साहित करती है। जैसे गाय पालन से गोबर मिलता है, उसी प्रकार मुर्गी पालन से जो अवशिष्ट निकलता है वह मछलियों का भोजन बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करके लागत में कमी और पशुधन के लिए लाभकारी है। हरियाली में
में भी वृद्धि होती है टिकाऊ कृषि से। टिकाऊ खेती की प्रकृति के अंतर्गत बागवानी एवं कृषि वानिकी को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिससे परिवेश की कुल हरियाली में

0: पर्यावरण की भी सुहावना एवं संतुलित बना रहता है। किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी टिकाऊ खेती की पद्धति के अंतर्गत एक ओर किसानों की लागत में कमी होती है तो दूसरी ओर खेती में वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के परस्पर उपयोग का एक ऐसा चक्र विकसित हो जाता है जिससे व्यर्थ पदार्थों का निकास शून्य हो जाता है। इससे किसान का आर्थिक लाभ बढ़ जाता है, साथ ही इससे केवल तात्कालिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता वरन लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। टिकाऊ खेती को जब किसान भाई अपनाते हैं तो सामाजिक समानता में भी वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से किसान, श्रमिक समुदाय एवं परिवेश के मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी लाभ के बराबर भागीदार होते हैं, इसलिए इससे सामाजिक समानता व समरसता में वृद्धि होती है। किसान को जहां आर्थिक लाभ मिलता है वहीं श्रमिक को निरंतर कार्य व मजदूरी की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ अक्षय स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ कृषि के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती एक ओर खेती के कृत्रिम संसाधनों से परहेज करती है जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे पर्यावरण में अक्षय स्रोतों की वृद्धि होने लगती है। उदाहरण स्वरूप रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के स्रोतों में वृद्धि होती है। सुख शांति और सौंदर्य के स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ खेती के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता एवं परस्पर निर्भरता का जो समग्र जीवन संतुलन निर्मित होता है वह मानवीय परिवेश में सुख शांति एवं सौंदर्य के स्रोतों में वृद्धि एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ कराता है। इससे कृषि क्षेत्र एवं परिवेश में जीवन की सार्थकता एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेत खलिहान एवं फसलों, किसान व श्रमिकों से अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। टिकाऊ खेती पशुधन के लिए भी उपयोगी है एवं अनुकूल सिद्ध होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थाई कृषि या टिकाऊ खेती द्वारा खेती जनित सभी प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही अंकुश लग जाता है और खेती प्रकृति का एक अवयव और अनुपम उपहार बन जाती है। टिकाऊ खेती के आधार पर विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने के प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे धान्य, दाल, तेल इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मृदा या मिट्टी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के जल संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण पहलू पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन कृषि मूल्य श्रृंखला के विविध चरणों में CO2 उत्सर्जन में कमी में योगदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए किसान भाइयों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए।
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे वार्ता प्राकृतिक खेती, इस पर जानकारी दे रही थी सुषमा श्रीवास्तव। अब हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ, उद्देश्य और महत्व पर। तो श्रोता हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत की अर्थव्यवस्था कृषि रीढ़ है और खेती की सफलता काफ़ी हद तक सिंचाई पर निर्भर करती है। आज भी देश के कई क्षेत्रों में हमारे किसान भाई वर्षा आधारित खेती करते हैं। समय पर पर्याप्त पानी न मिलने की वजह से उनका जो फसल उत्पादन है वो प्रभावित होता है और इस प्रकार से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे और उपलब्ध जल संसाधनों का कुशल एवं वैज्ञानिक तरीके से उसका उपयोग हो, और इसका प्रमुख नारा भी रहा है श्रोताओं,

कि हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। इसका अर्थ है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचनी चाहिए और पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त की जा सके। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य श्रोताओं इस प्रकार से है कि हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचेगी, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए जल का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग होना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे कि ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई विधि का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करना और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीक को अपनाना इस पर जो योजना का है वह मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस योजना का जो है सबसे जो पहला उद्देश्य था हर खेत को पानी, तो इसका उद्देश्य है उन खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना जहां अभी तक पानी नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए नहरों का विस्तार, खेत तालाब चेक डैम कुएं और अन्य जल स्रोतों का विकास करना है। इसके अलावा श्रोताओं जहां पर अभी तक हमारे किसान भाई पोखर तालाब का निर्माण नहीं कर सके हैं या जो अभी तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है उसका भी पुनः उद्धार करना और उसका सही तरीके से देखभाल करना भी इसके अंतर्गत आता है कि सिंचाई के इन जो तमाम सुविधाएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करके हमारे किसान भाई उसका लाभ ले सके। इतना ही नहीं, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे विधि जो है उसका आधुनिक तकनीकों को अपनाना जिससे कि किसानों को अधिक पानी की बर्बादी होने से उन्हें बचाया जा सकता है और इस तकनीक से काफ़ी हद तक पानी की बचत होती है। इतना ही नहीं, फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से इन्हें जो किसान भाई हैं उन्हें नई तकनीक को जरूर अपनानी चाहिए जो ये तकनीक है उनके लाभ के लिए हैं और इसके प्रति उनका जो जागरूक होना चाहिए कि पानी की बचत करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करना कितना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा जल संसाधनों का विकास करना ताकि भविष्य में पानी उपलब्ध उन्हें पर्याप्त पानी मिल सके। तो श्रोताओं, जल संरक्षण करना ये हम हमेशा आप लोगों के बीच इसमें चर्चा करते हैं कि आज के समय में वर्षा जल का संरक्षण करना कितना आवश्यक है और हर स्तर पर होनी चाहिए। यदि हमारे किसान भाई हैं तो उन्हें अपने खेतों में करनी चाहिए तालाब या पोखर निर्माण करके, यदि घर में हैं तो हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने घरों में सोखता बनाकर, यदि उद्योगों में है तो रिसाइकलिंग करके भी पानी का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने पानी के अधिक से अधिक हम बचत पे ध्यान देंगे और दूसरी ओर इसके संरक्षण पर भी ध्यान देंगे तभी जाके इसका जो पानी जो जल संकट है उससे हम इससे निजात पा सकते हैं। किस सिंचाई की बेहतर सुविधा तो उपलब्ध करानी ही है, पानी की बचत भी होनी है, फसल उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार होना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है। उर्वरकों का भी बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही सूखे की स्थिति में खेती करना तो आसान नहीं होता है लेकिन फिर भी किसानों को इसके लिए काफ़ी जो है जागरूक होना चाहिए कि इस स्थिति में वे कौन सा तकनीक अपनाएं और बागवानी सब्जी फल उत्पादन सब्जी उत्पादन इत्यादि को साथ ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो जैसे कि जल संरक्षण की हम बातें कर रहे थे तो श्रोताओं ये आज जो है जल संरक्षण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रत्येक किसान जो है अपने खेतों में मेड़बंदी करवाएं, वर्षा जल संचयन करें, खेत में तालाब का निर्माण कराएं, पानी के विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें और साथ ही जो भी उनके जो आसपास जो भी तरीके हैं जैसे कि जहाँ

चापाकल हो वहाँ पे सोखता का निर्माण करवाएं, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल जो है अतिरिक्त जल का बहाव जो भी है वो आसानी से ढल के किनारे आ जाए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को इन पर ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, तभी जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक लाभकारी योजना सिद्ध होगी और हर खेत को पानी मिल सकेगा, प्रति बूंद अधिक फसल का जो संकल्प है वो भी सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को भी इसके लिए आगे आना होगा, जागरूक होना होगा और इससे जुड़ना चाहिए उन्हें। तो चलिए श्रोताओं, जानकारी के बाद हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोता आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर कुछ परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ चलना चाहिए और नए को अपनाना चाहिए। कृषि में भी यही बात लागू होती है कि हम समय के साथ चलें और नए को अपनाएं। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं अंतर्वर्ती खेती की। अंतर्वर्ती खेती यानी कि एक ही खेत में एक या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति व्यवस्था के अनुसार उसे लगाई जाती है और उसकी जो उत्पादन है वो लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मक्का के साथ अरहर, सोयाबीन और मक्का के साथ गेहूं और उसके साथ सरसों जैसी फसलों को एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित अनुपात में उगाया जाता है। तो अंतर्वर्ती खेती के जो कुछ

0: लाभ होते हैं हमारे किसान भाइयों को वो इस प्रकार से है कि एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। इससे खेत की उपलब्ध जगह, धूप, पानी और पोषक तत्वों का भरपूर उपयोग हो पाता है और साथ ही कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसान भाइयों को जो है आय में उनकी वृद्धि होती है। यदि वे एक फसल का बाजार भाव कम हो जाए या किसी कारण से उनकी उपज प्रभावित हो जाए तो दूसरी फसल से उनकी जो भरपाई है वो हो जाती है और उनके आय के स्रोत में जो है वो विविधता बनी रहती है। एक ही फसल पर निर्भर रहने की तुलना में अंतर्वर्ती खेती में मौसम, कीट या रोग से होने वाले नुकसान का जोखिम भी अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि यदि उन्हें एक फसलों से नुकसान पहुंचती है तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाती है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे जरूर से ज़रूर एक से अधिक फसलों को लगाएँ। भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग। अलग अलग फसलों की जड़ें अलग अलग गहराई तक जाती हैं और उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए खेत के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए ये तालमेल करके उन्हें बुआई करें। जो अधिक गहरे जड़ वाली फसलें हैं उनके साथ कम गहरी वाली जड़ें फसलें जो हैं वो लगानी चाहिए। और इतना ही नहीं श्रोताओं, मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। जैसे कि हम अगर दलहनी फसलें लगाते हैं जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि, तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करके ये अपने जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। इन्हें उचित जो है फसल संयोजन लगाने से मिट्टी के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और अगले फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा उन्हें जो फसल में डालने होते हैं उसकी मात्रा कम डालनी होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंतर्वर्ती फसल में हम दलहनी फसलों के साथ और भी जो साग सब्जी लगा सकते हैं या अन्य फसलें लगा सकते हैं, इससे दोहरी लाभ होगी। दो फसलों की पंक्तियों से खेत की जमीन अधिक ढक जाती है जिससे खरपतवारों को पर्याप्त जगह और प्रकाश नहीं मिलता। इससे खरपतवार पर दबाव बना रहता है जिससे कि अनावश्यक रूप से वे नहीं निकल पाते। उचित फल संयोजन से ही एक फसल का लगातार बड़ा क्षेत्र नहीं रहता। इसमें कुछ कीटों और रोगों को तेजी से फैलने की संभावना कम हो सकती है और इससे जो है रोग लगने की संभावना, कीट लगने की संभावना भी इसमें कम हो जाती है। फसल का अधिक भूमि आवरण होने से वर्षा की जो बूंदे का सीधा प्रभाव मिट्टी पर कम पड़ता है और मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। साथ ही फसल अवशेष भी नमी संरक्षण करने में उपयोगी होता है। कुछ अंतर्वर्ती फसल संयोजन से अनाज के साथ हरा चारा भी मिल जाता है और फसल अवशेष भी प्राप्त हो जाते हैं जिससे कि पशुपालकों को अतिरिक्त कमाई हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतर्वर्ती खेती करने से हमारे किसान भाइयों को लाभ ही लाभ होता है। लेकिन ध्यान रहे श्रोताओं कि जब भी आप फसल का चुनाव करें तो आप उसके सही जो है उनके संयोजन जो है उस पर बिल्कुल ध्यान दें और सही चुनाव करें, पंक्ति पर ध्यान दें और साथ ही बुआई का समय और बीज की मात्रा और साथ ही खाद की मात्रा इत्यादि इत्यादि पर अवश्य ध्यान दें जिससे कि फसलों को जो है पानी, पोषक और तत्व प्रकाश का एक दूसरे से ना टकराए और इसमें कोई उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अंतर्वर्ती यदि किसान इस अपनाते हैं अपने खेतों में तो निश्चित ही उन्हें आय की वृद्धि होती है, जोखिम कम होता है, उत्पादन बढ़ती है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो ये काफ़ी कारगर है और काफ़ी उपयोगी है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब इस जानकारी के बाद श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। जाड़े की अगेती सब्जी फसलें एवं उसकी खेती, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ गढ़वा से दिलीप कुमार पांडे और उनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: सारे गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जी हां ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम बातें करेंगे जाड़े की अगेती सब्जियों की खेती की। क्योंकि हमारे किसान भाई अगर अगेती सब्जियां की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से वो पहले बाजार में पहुँचते हैं सब्जियां लेकर के और मौसम के अनुकूल मुंह मांगा दाम उनको प्राप्त होता है। और जाड़े की अगेती सब्जियों की खेती से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज आपके साथ हैं

0: गढ़वा जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी, स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार आपको और मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं को जो इस कार्यक्रम को बड़ी लगन से सुनते हैं। जब अगेती खेती की बात आती है तो मुनाफा और लोगों का स्वास्थ्य, ये दोनों मुख्य विषय होती है
0: जी।
1: जैसे हम लोग इस बात को मानते हैं कि जब स्वस्थ रहना है तो अपने भोजन में सब्जी का जितना से ज्यादा हम लोग प्रयोग करें उतना ही फायदेमंद होता है
0: जी।
1: जब सब्जी की बात आती है तो सब्जी हमेशा आप देखेंगे कि बाजार में किल्लत रहती है। जब भी मौसम थोड़ा खराब होता है तो सबसे ज्यादा भाव बढ़ता है किसी का, तो सब्जी का बढ़ता है
0: जी।
1: और जब जाड़े की मौसम शुरू होती है, जब हमारे पास सब्जी का अथाह प्रोडक्शन होना शुरू होता है तो भाव गिर जाता है। लेकिन यदि जब हम अगेती सब्जी उगाते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। जब अगेती सब्जी की बात करेंगे तो इसमें दो चीज सबसे मुख्य होता है। एक, ठंड से बचाव। यदि ठंड शुरू हो गया तो ठंड से कैसे बचाव करेंगे, और प्रभेद जो हम सब्जी लगा रहे हैं वो कौन सा सब्जी लगा रहे हैं और उसका कौन सा प्रभेद लगा रहे हैं
0: जी।
1: तो ये तीन बातें मुख्य रूप से होती है। जब हम लोग एडवांस में सब्जी उगाने की बात करते हैं तो जिनका बाजार मूल्य बहुत अच्छा कॉन्स्टेंट रहता है उन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए
0: जी।
1: जैसे हम लोग बोलेंगे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। अभी आप देखेंगे कि ब्रोकली का अच्छा डिमांड रहता है और हमेशा से बाजार में रहता है। मटर, गाजर, आलू, इसके अलावा शिमला मिर्च, पालक, जिसका कि सालों भर डिमांड रहता है। तो इसको अगेती के रूप में और सालों भर डिमांड के रूप में भी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो पत्ती वाली सब्जी होती है, मूली हुई, पालक, धनिया, मेथी, इसके बाजार को भी हम अगेती जब उपज करते हैं तो अच्छा बाजार मूल्य मिलता है। तो इनका आपको अगेती फसल का चुनाव करना है। अब आती है कि वेराइटी पे, तो वेराइटी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है
0: जी। बिल्कुल।
1: अगेती फसल में क्या होता है कि जो नॉर्मल दिन से जो उसका होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग आलू की बात करें तो आलू का फसल हम देखेंगे कि 120 दिन में तैयार होता है
0: जी।
1: लेकिन जब हम अगेती आलू की बात करेंगे तो उसका फसल कम से कम 80 दिन में तैयार हो और उसको हम सितंबर महीना में लगा लें तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो जैसे आलू की वेराइटी की हम बात करें तो जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और चंद्रमुखी, ये तीन ऐसा वैरायटी है कि ये 80 दिन में आपको उपज दे देगी
0: जी।
1: और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है
0: जी जी।
1: बाकी से ये आलू के वैरायटी का चुनाव हो गया। इसी तरीका से हम लोग गोभी की बात करें, अर्ली मार्केट में आ पाए तो उसके लिए पूसा, केतकी, अर्ली कुआरी, पूसा दीपाली, ये वैरायटी और अर्ली सिंथेटिक, ये सब जो है बहुत अच्छी वैरायटी है
0: जी।
1: और इसका बाजार मूल्य भी मिलेगा, कम दिन में होगा भी, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। पत्ता गोभी की बात करें तो गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया, ये वैरायटी, ये भी 60-65 दिन में तैयार हो जाती
0: है फसल।
1: तो इसमें जो तैयार होने का बात है, नर्सरी एक चीज होता है कि नर्सरी से जब हम खेत में जब लगाते हैं तो खेत में लगाने का समय 60 से 65 दिन में होता है। लेकिन यदि हम इसको नर्सरी में अभी के समय में जब हल्का बरसात का समय है उसी दिन में 30 से 35 दिन हम लोग नर्सरी ट्रे में इसको लगाएं तो हमारा 30 दिन इधर हो रहा है और 60 दिन खेत में हो गया। तो ये जो 30 दिन का समय है नर्सरी में, इसको हम बचा ले रहे हैं। ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली में लकी, फैंटेसी F1, ग्रीन मैजिक, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है।
0: अच्छा।
1: ये भी आपका बाजार में 60 से 65 दिन में हम लोग आराम से पहुंचा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसमें फायदा क्या होता है कि ब्रोकली का एक ऊपर से आप हेड काट रहे हैं तो इसके बाद नीचे से 20 दिन के अंदर में दूसरा हेड तैयार हो जाता।
0: अच्छा।
1: है इसका भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, कभी भी बाजार में 60 से 65 रुपये के जी से नीचे नहीं जाएगा
0: जी।
1: मटर की बात हम लोग करें तो मटर जो कम दिन में तैयार होता है, जैसे आरकेल है, PM 113 है, आजाद मटर 1 है, तो ये सब वैरायटी जो है 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन में आप बाजार में आराम से आ जाती है। तो ये वैरायटी का चुनाव मुख्य रूप से है। इसी तरीका से हम लोग गाजर का बात करें तो गाजर की पूसा केसर वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है। मूली की पूसा चेतकी वैरायटी है, ये भी 30-40 दिन में तैयार हो जाती है। यहाँ तक यदि अच्छा खाद आप दिए हैं तो 25-30 दिन में इसका फसल तैयार हो जाता है। आलू की बात हम लोग किए हैं, टमाटर में झारखंड के लिए स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, बहुत अच्छी वैरायटी है। शिमला मिर्च की बात हम लोग करें तो कैलिफोर्निया

0: वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, भारत, इंद्रा, ये वैरायटी है, ये बहुत कम दिन में तैयार हो जाती है और इसको हम लोग अर्ली वैरायटी के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वैरायटी मुख्य बात है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, हम लोग जो नर्सरी इसका जब तैयार करें पौधे की, जिसका नर्सरी तैयार करना है, उस नर्सरी के लिए हम लोग जो ट्रे होता है
1: जी जी,
0: उस ट्रे में उगाएं। और ट्रे में क्या करें कि आधा कोकोपीट और आधा वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसको भर करके और बीज से उगाएं। और इसके बाद तब इसको हम लोग खेत में लेकर के जाएं।
1: अच्छा,
0: कोकोपीट और इसमें लगाने से पौधा स्वस्थ होता है, बीज का उपचार भी हम लोगों को जरूर करना चाहिए
1: समय समय पर।
0: हाँ, समय समय पे बीज उपचार हम शुरुआत में कर सकते हैं, जैसे बेबिस्टिन तो एक पुराना सिस्टम है ही, उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जैविक विधि से भी इसका कर सकते हैं, जिसकी हम लोग समय समय पर चर्चा किए हैं कि 5 ml जो हम लोग बीज उपचार के लिए ऑर्गेनिक मेथड से बनाते हैं बीजामृत, तो बीजामृत से भी हम लोग प्रत्येक केजी में मात्र 5 ml चाहिए। करना कुछ नहीं है, बीज को फैला दिए, उसके ऊपर जितना जरूरत है उतना जो अमृत को हम लोग गिराते हैं और उसको मिला करके धूप में नहीं रखेंगे, छाया में आधा घंटा के लिए सुखा लेंगे और बीज की बुआई करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि बीज स्वस्थ पैदा लेता है, और जब बीज स्वस्थ होता है तो खेत में स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज आती है, खेत जब हम लोग बनाते हैं तो खेत में मिट्टी का भुरभुरापन जरूर हो। तो भुरभुरापन के लिए हम जितना भी हो सके उतना कम से कम कंपोस्ट हम लोग खेत में मिला सके। ऐसे वैज्ञानिक ढंग से हम लोग बोलते हैं कि 8 से 10 टन प्रति एकड़
1: के हिसाब से चलिए
0: कंपोस्ट आप मिलाइए। लेकिन यदि हमारे पास उतना मौजूद नहीं है तो जितना भी मौजूद है उतना कंपोस्ट हम लोग मिलाने की कोशिश करें खेत में। दूसरा चीज, जब 2 से 3 बार हम लोग खेत में पट्टा दे लें, पट्टा के साथ जुताई करें, पट्टा दे लें और एक स्लोप जैसा बना दें कि किसी कारण से यदि पानी हो रहा है तो वो निकल जाए।
1: अच्छा।
0: या हम लोग जो भी सब्जी लगा रहे हैं उसको मेढ़ बना के लगाएं, सीधा प्लेन में नहीं लगाए। जब भी अर्ली जो भी किसान करते हैं तो मेड़ बना के करेंगे, जिसके लिए जो निर्धारित दूरी है, जैसे आलू हम लोग, तो आलू को हम लोग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मेड़ बनाएंगे। इसी तरीका से टमाटर की हो तो उसका जब हाइब्रिड हम लोग लगाएंगे, ये सब हाइब्रिड की ही हम लोग बात किए, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएंगे। तो जब भी बनाएंगे तो मेढ़ पे ही लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: उससे क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि किसी कारण से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और एक बाई एक फसल पूरी मारी चली जाती है, लेकिन जब मेढ़ पे हम करते हैं तो पानी आसानी से निकल जाती है, हवा भी पौधे को लगता है और जो उसका सही तापमान होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जाड़ा से बचाना है, तो जाड़ा से ये बचता भी है। जैसे मेढ़ पे आप जब लगाएंगे पौधा
1: तो पानी
0: उतना पानी तो निकल ही जाता है, लेकिन जैसे धूप आया तो धूप भी मेढ़ को गर्म करके रखता है और पौधे को जितना गर्मी चाहिए गर्मी मिलता है और वो क्या होता है कि जाड़ा का कम प्रभाव पड़ता है। तो मेढ़ पे लगाना बहुत जरूरी है। जो भी निर्धारित दूरी किसान इसका मेंटेन करते हैं, बस उनको एक काम करना है कि मेढ़ पे जरूर लगाए। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे जैसे सल्फर का प्रयोग, तो सल्फर का प्रयोग किसान को जरूर करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: कुछ नहीं है, किसान भाई अपने खेत में जैसे 24 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर का डोज किसान भाई दे सकते हैं। यदि कट्ठा में किसान भाई देना चाहते हो तो 300 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से आप सल्फर दे सकते हैं
1: जी।
0: इस तरीका से मेंटेन करके किसान भाई अपने खेत को उचित पोषण देते हुए एक काम कर सकते हैं। अब दूसरा बात आती है कि यदि किसी कारण से ज्यादा जाड़ा पड़ने लगे तो वैसी स्थिति में किसान भाई क्या करें, तो वैसी स्थिति में किसान भाइयों को जैसे अब तक जो है लो, हम लोग लो प्लास्टिक टनल बनाते हैं। लो प्लास्टिक टनल कुछ नहीं है, वो बस केवल प्लास्टिक से उस सब्जी को ढक देना है और उसके लिए एक टनल जैसा बना लेते हैं। टनल मतलब उसके भीतर जैसे टनल होता है, हम लोग घुस के पार होते हैं, तो उतना ही ऊंचाई से।
1: अच्छा।
0: उतना ही ऊंचाई जैसे 1 मीटर की ऊंचाई पे।
1: अच्छा।
0: जो पौधा है यदि पत्तीदार पौधा है तो उसको 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हम लोग लकड़ी बांध करके और उसको प्लास्टिक से ढक देते हैं जब ज्यादा ठंडा का समय आ रहा है। तो इससे दोनों चीज होता है, सर्दी से उसका प्रभाव कम होगा, ठंडा हवा से भी बचाव कम होगा और जो ऊपर से गर्मी होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप होने से क्या होता है कि गर्मी मिलती है और कम दिन में फसल हमारी तैयार होकर के बाजार तक पहुँचने

0: के लायक हो जाती है।
1: तो ये बातें हुई जाड़े की अगेती सब्जियां हम किस प्रकार से करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें, पौधों में बढ़वार किस प्रकार से हम करें, खाद का व्यवहार कैसे करें, इन सारी बातों से संबंधित जानकारी साझा कर रहे थे गढ़वा जिला के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। सर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और अगेती सब्जियां जाड़े की अगेती सब्जियां से संबंधित बातें हमारे किसान भाइयों के साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें भेंटवार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। हमारे जो अक्सर किसान भाई हैं वह पशुपालक भी होते हैं और पशुओं की देख रेख तो करनी ही होती है, लेकिन जो नवजात बछड़े होते हैं उनकी विशेष देखभाल करनी होती है, क्योंकि जन्म लेते के साथ जो है उन्हें कई प्रकार की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी होती है, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद उसकी सफाई करें, बछड़े के जन्म के बाद उसकी नाक और मुंह में जमा श्लेष्मा को साफ करें ताकि वह आसानी से सांस ले सके, शरीर को साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछें और नाभि को संक्रमण से बचाने के लिए उसमें उचित एंटीसेप्टिक दवा लगाएं। पहला दूध जिसे कि हम खीस कहते हैं वो कोलोस्ट्रम सबसे ज़रूरी है। जन्म के शुरुआती घंटों में मिलने वाले पहला दूध जिसे खीस कहते हैं बछड़ों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। श्रोताओं इसमें रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं और बछड़े को जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके खास करके पहले 2 घंटे के भीतर खीस पिला देनी चाहिए, जिससे कि 24 घंटे में पर्याप्त मात्रा में खीस मिले और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और ये ज़रूर करना चाहिए सभी पशुपालकों को। ठंड और नमी से भी बचाएं, नवजात बछड़े को सूखी साफ और हवादार जगह पर रखें, लेकिन उसे ठंडी हवा के सीधे संपर्क में ना आने दें। सर्दियों में सूखी बिछावन रखें, बोरा या साफ कपड़े का उपयोग करें और बरसात में फर्श पर पानी का जमा ना हो, यानी जहां पे बछड़े हो वहां पे नमी नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। नाभि में संक्रमण होने पर सूजन गर्माहट या मवाद जैसे दिखाई दे तो तुरंत उसकी सफाई करें और संक्रमण से बचने के लिए उसमें एंटीसेप्टिक दवा लगाएं या टिंचर दवा लगाएं। ये सब लगाते रहें 2-3 दिन ताकि नाभि सूख सके। खीस के बाद बछड़े को उसकी उम्र और वजन के अनुसार उसे पर्याप्त दूध देनी चाहिए। जिसमें आप बच्चे को पर्याप्त भोजन दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं वो बर्तन साफ होनी चाहिए और बहुत अधिक गंदा नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें कि अचानक अधिक मात्रा में दूध भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, नहीं तो उन्हें दस्त होने की संभावना हो सकती है। उचित उम्र से साफ और ताज़ा पानी भी उन्हें दे सकते हैं। दूध पिलाने वाले बर्तन को प्रत्येक उपयोग के बाद अच्छी तरह से धोएं। बछड़े के रहने की जगह, बर्तन और बिछावन सभी जगह स्वच्छ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, जिससे कि अन्य संक्रमण से बचाव हो सके। बछड़ा जब थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला स्टार्टर दें, यानी दाना और साफ नरम चारा दें, धीरे धीरे देना शुरू करें। इससे उनके पेट और जुगाली करने वाले तंत्र का बेहतर विकास हो पाएगा। नवजात बछड़ों में दस्त जो है वो गंभीर समस्या देखी जाती है। बार बार पतला मल, सुस्ती, आँखों का धंसना, दूध कम पीना इत्यादि लक्षण दिखाई दे तो जरूर अपने चिकित्सक से मिलें और उचित सलाह लेकर उसे दवा दें। तो ध्यान रहे किसान भाइयों कि ये बछड़े का निगरानी आप समय पर करते रहें और उन्हें किसी भी प्रकार के दस्त, खांसी, बुखार, नाक से श्राव या अत्यधिक कमजोरी दिखाए तो जरूर अपने पशु चिकित्सक से मिले और तुरंत उसे संपर्क करके उसका दवा जरूर दें। तो इस प्रकार से अपने बछड़ों की देखभाल अवश्य करें ताकि बच्चे जो है वो हिस्ट पुष्ट बने, स्वस्थ बने और आगे जाके आपके लिए भी सहयोगी बने। तो चलिए श्रोताओं अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पर। तो श्रोताओं आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ हमें दी इजाज़त कार्यक्रम ग्रामीण सभा से। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग।

0: पासबुक चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: मेरे भाई
2: आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
6: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
9: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
8: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
9: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
10: एनएसबी कराने।
9: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने की मुलाकात। राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई क्षेत्रों में निवेश पर हुई चर्चा। रांची में जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छात्रों से तकनीक का उपयोग नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ करने का किया आह्वान। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भेजा, अगले सप्ताह होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। इस दौरान 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का है अनुमान। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक रूट को लेकर दी गई आवश्यक हिदायतें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में निवेश, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई तथा सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में क्षमता विकास पर चर्चा हुई। श्री छाबरिया ने निवेश के जरिए राज्य के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा जताई। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने झामुमो और कांग्रेस पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक खनन के लिए यह बदलाव किया गया है। श्री कोड़ा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से आर्थिक लाभ कमाने के लिए सत्तारूढ़ दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
12: यहाँ पर कोयला का रॉयल्टी 450 रुपया है पर टन, कोयला में ये आयरन ओर में यहाँ 600 रुपये पर टन है। वही उड़ीसा जाइएगा तो वहाँ पर मुश्किल से 50 रुपया टन है। ये हालत यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर कोई सेस पर लगाई नहीं। स्वाभाविक रूप से जब लागत बढ़ेगा तो मार्केट में खनिज संपदा का दाम बढ़ेगा, खनिज संपदा का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ उद्योग धंधे को चौपट होगा।
11: प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। मौके पर मौजूद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
13: इलेक्शन कमीशन झारखंड में वोट से अपने नियमों को बदल दे रहा है। कभी कहता है कि हम हथियार डॉक्यूमेंट, कभी कहता है हम हथियार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी कहता है हमारा आवासीय चाहिए, कभी कहता है हमें जातीय चाहिए। पूरे लोगों को परेशान करके रख दिया है।
11: रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण से एसआईआर के मुद्दे पर

0: विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता सामने आई है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
1: देश में जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा SIR को लेके जो भ्रांतियां फैलाई जा रही, हम उनको कहना चाह रहे हैं कि SIR जो कि एक पार्टी विशेष की चीज नहीं है, वो भारतीय नागरिकता का जो प्रमाण पर है वो है। चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता है, वो भारत वर्ष का होता है।
0: राज्य में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब केवल 2 दिन बाकी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 7 जमा होने मात्र से नाम नहीं हटेगा, बल्कि पूरी जांच और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। JPSC की सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख तय की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की, जो राज्य के खनिज और औद्योगिक विकास के लिए वरदान साबित हो रही है।
2: झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अधिकांश खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। इस खनिज और श्रम संपदा को देश के विकास से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की परिकल्पना की है, जिसका बड़ा असर राज्य में दिख रहा है। सुनिए इस योजना के विजन पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है।
3: जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
2: प्रधानमंत्री की इसी सोच के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। चाईबासा के व्यापारी और लाभुक इस योजना से बेहद उत्साहित हैं और राज्य में इसके सकारात्मक प्रभाव को महसूस कर रहे हैं।
4: मेक इन इंडिया परिकल्पना की झारखंड में व्यापक संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो झारखंड में भी खनिज आधारित निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। पिछले 12 वर्षों में इसमें काफी प्रगति हुई है। ऐसा माहौल राज्य सरकार को बनाना चाहिए जिससे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।
2: इन लाभुकों की बात से सहमति जताते हुए पश्चिमी सिंहभूम के युवा समाज सेवी रवि बिरूली का भी मानना है कि राज्य में न सिर्फ खनिज संपदा की प्रचुरता है, बल्कि यहाँ श्रम संपदा भी असीमित है और यहाँ के लोग मेहनती हैं। इसका पूरा लाभ यहाँ के निर्माण क्षेत्र को मिलना चाहिए।
5: इंडिया झारखंड के युवाओं के लिए अपने हुनर को आगे बढ़ाने और नए अवसर प्रदान करने का एक अच्छा रास्ता है। वहीं झारखंड में प्राकृतिक संसाधन काफी भरपूर मात्रा में है। यहाँ के युवा काफी मेहनती भी हैं। अब उन्हें जरूरत है अपने हुनर को पहचानने के लिए और लोगों को रोजगार देने की हैसियत से काम करने के लिए।
2: स्पष्ट है कि राज्य में खनन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ निर्माण क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का लाभ लोगों को मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी हम कर पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरायकेला खरसावा के चालियामा स्थित रूंगटा माइंस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने उपायुक्त संग बैठक की। हाईकोर्ट के निर्देश

0: पर 18 महीने में एकीकृत कार्य योजना पूरी होगी। बैठक के बाद श्री राजकमल ने बताया कि भारी वाहनों के लिए अंदर बाहर पार्किंग और घायलों के त्वरित इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
1: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में एक अच्छा सोल्यूशन करने के लिए राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को साथ में काम करने का निर्देश दिया है। व्यक्ति जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनको कैसे ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल फैसिलिटी जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, इसके लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस अवेलेबल कराना, ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के बारे में भी उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया।
0: बोकारो के चंदन क्यारी स्थित छऊ केंद्र में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय सरायकेला छऊ संगीत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्र के समन्वयक डॉ. संजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य पारंपरिक नृत्य और मुखौटा कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। राज्य में मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक रांची, कोल्हान और संथाल परगना में और विभिन्न हिस्सों में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक रूट पर विशेष चर्चा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने की मुलाकात। राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई क्षेत्रों में निवेश पर हुई चर्चा। रांची में जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छात्रों से तकनीक का उपयोग नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ करने का किया आह्वान। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भेजा। अगले सप्ताह होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक रूट को लेकर दी गई आवश्यक हिदायतें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
3: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
4: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
3: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
4: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
3: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
3: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
4: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
3: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
4: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
3: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने संचालित क्लिनिक, दवा दुकान एवं जांच घर का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कई प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर आधा दर्जन संस्थानों को सील कर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई।
2: ये स्पष्ट है कि अगर यहाँ पे किसी तरह से अवैध गतिविधि चल रही है और पास में हमारा सरकारी अस्पताल, तो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है और जिला प्रशासन भी इसको ओन करते हैं कि हमारे अंतर्गत ही तो स्वास्थ्य विभाग आता है, रेमसीच आता है, उसमें हम डिनाई नहीं करते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया है और आगे भी चेतावनी हम दे देते हैं। जो भी लोग यहाँ पे अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो आज हमारे रडार में नहीं है, वो यहाँ से तुरंत भाग जाए तो फिर हम लोग उन पे भी दबिश करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का दौर आज चला है, आगे भी चलता रहेगा। आप सभी लोगों से भी

0: मेरा अनुरोध है कि इस तरह की एक्टिविटी अगर होती है एविडेंस जरूर रिकॉर्ड करिए। आप एक पेशेंट बन के जाइए, एविडेंस जरूर रिकॉर्ड करिए, बिकॉज जब ये ट्रायल में जाते हैं कई बार एविडेंस की कमी की वजह से अपराधी छूट जाते हैं।
1: पालामू में ऑपरेशन मुस्कान से खुशियां लौट रही हैं। पुलिस ने 97 मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक धारकों को लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने पूरी जानकारी दी।
2: पलामू पुलिस के द्वारा आज 97 टोटल मोबाइल की रिकवरी करके विभिन्न थाना क्षेत्र के अलग अलग आवेदकों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और अलग अलग थाना क्षेत्र से अलग अलग मोबाइल की रिकवरी हुई है, जो कि हमारे लिए एक खुशी का विषय है और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनका मोबाइल खो जाता है उनको दोबारा मोबाइल लौटाना और जिनको ये मोबाइल मिलता है तो मोबाइल देने वाले को और लेने वाला दोनों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खुशी का मौका है। इसके लिए मैं सभी थाना प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा रखता हूँ ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये हमारे पलामू जिला के लोगों के लिए चेहरे पर मुस्कान लोग वापस लौटाने का काम करता रहता हूँ।
1: पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के दुल्ही गांव में कर्मा विसर्जन पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कोयल नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने घटना पर चिंता व्यक्त की है।
3: कर्मा पूजा विसर्जन बहाने के लिए यहाँ के 5-6 नौजवान गए थे नदी में और नदी में जाने के बाद नदी का धारा बहुत तेज था। बच्चा एक दूसरे को बचाने में 5 बच्चे को जान चला गया। आज बहुत ही दुखद मर्माहत घटना है।
1: पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के बसोरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भोजन की खराब गुणवत्ता व रसोई की गंदगी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। एक छात्र ने मामले पर प्रकाश डाला।
4: गैस का यहाँ पर जब प्रॉब्लम हो रहा था तो खाना बाहर बनाया जा रहा था, लेकिन अभी जब गैस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है फिर भी खाना सर बाहर बनाया जा रहा है और अभी सर इतना धूल वगैरह सब खाना में जाके मिल रहा है। अभी तो सर गैस भी अवेलेबल है फिर भी ये लोग कोयला पर खाना बना रहे हैं, जैसे रोटी भी जल रहा है, अब जला हुआ रोटी हम लोग खा रहे हैं। आलू का जो भुंजिया मिलता है वो सड़ा हुआ आलू उसमें मिलता है।
1: भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सरकारी कार्यालयों में हिंदी के आधिकारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ललहे मेदनी नगर स्थित सब स्टेशन में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता हिंदी प्रशिक्षक दिनेश कुमार शुक्ल रहे। उन्होंने हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग, कार्यों में इसके प्रभावी उपयोग और राजभाषा जागरूकता पर प्रतिभागियों से संवाद किया। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदनी नगर गायत्री मंदिर रोड स्थित बेरिया में नव निर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब आम जन को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
5: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा जिले में आजकल विधानसभा प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

0: बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:20 और 11 सेकेंड हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप लोगों के घर आंगन में, युवाओं से, उनके माता पिता से, छोटे छोटे भाई बहनों से बात करने के लिए करियर से संबंधित। हम बुनियाद इतनी मजबूत कर देना चाहते हैं ना युवा साथियों आपकी, कि बड़े होकर आपको ये सोचना ना पड़े कि कहाँ जाएं, कैसे सम्मान पाएं, कैसे पैसा कमाएं और कैसे अपनी जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाएं, खुद भी और परिवार को भी। बुनियाद कार्यक्रम, बुनियाद, जी हाँ, बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। जी हाँ, मैंने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और हम लगातार इस यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं और मात्र इतना कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई का हब है ये, यहाँ से आपकी जो मर्जी है वो पढ़ सकते हैं। करीब 13-14 तरीके के व्यवसायिक पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, प्रोफेशनल एडुकेशन की व्यवस्था की गई है। मेडिकल से शुरू करें, MBBS से, तो पैरामेडिकल भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है, यानी सब कुछ है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है। इसके अलावा मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, 5-year 3-year दोनों, लॉ भी है, जर्नलिज्म भी है, लाइब्रेरी साइंस भी है, ढेर सारे ब्रांचेस हैं, ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां अपनी मर्जी की पढ़ाई चुनके आप अपने करियर को बना सकते हैं। और एंड ऑफ द डे पढ़ने के बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो रोजगार की संभावनाएं खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो गए हैं। और एक बात बताएं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट है जो आपको तैयार करता है इंटरव्यूज के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, कि आप कैसे इंटरव्यू का सामना करेंगे। बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं जहां आप रोजगार ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं ना, तो चिंता की कोई बात नहीं, अलग से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। हम एक नंबर बता रहे हैं जो हमेशा बताते रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, नोट कर लें और जिनके पास है वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। नंबर है 9431899002, 9431899002। और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121001, 1800121001। और एक वेबसाइट भी है जहां आप आराम से एकदम लैपटॉप खोलिए और इस साइट पर जाइए gnsu.ac.in और सारी जानकारियां ले लीजिए। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई का मामला है, अपने जीवन का मामला है, तो घर बैठ के लग्गी से पानी पिलाना एक हमारे यहाँ कहावत है ना, उसको चरितार्थ मत कीजिए। बड़े भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, एक बार आ जाइए, देख के जाइए। जुड़ना ना जुड़ना अलग की बात है, लेकिन जितना ज्यादा घूमेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे ना, तो आपको उतना ज्यादा कुछ निर्णय पर पहुंचने में सुविधा होगी। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। इस कार्यक्रम में, बुनियाद कार्यक्रम में, हम पिछली बार मैनेजमेंट पर बात कर रहे थे मनीष कुमार उपाध्याय जी से। आज भी हमने कहा था कि आगे आने वाले एपिसोड में भी इन्हीं से बात होगी, क्योंकि कुछ सवाल छूट गए थे जिसे हम

0: पूछना चाहते हैं, और कुछ सवाल आए हैं जो पिछले एपिसोड में बजे थे उनको फिर से पूछने के, तो वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से बुनियाद में मनीष जी का हम स्वागत करते हैं। मनीष जी, आज जो नए लोग जुड़े हैं, हाँ पुराने तो आपको जान रहे हैं जो पिछले एपिसोड में सुने थे, आज के एपिसोड से जो बुनियाद कार्यक्रम सुनना शुरू किए हैं बिहार और झारखंड में, उनको अपना परिचय दे दें, फिर बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे।
1: मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार उपाध्याय हुआ और मैं FMS गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया मार्केटिंग मैनेजमेंट और इंडियन नॉलेज सिस्टम है।
0: बहुत खूब मनीष जी, पिछले एपिसोड में रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था, मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारे सवाल आए थे और आपने जो आंसर दिया था, हाँ उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी, बच्चे समझे थे, और उसके बाद बहुत सारे सवाल आए हैं जो हम आज आपसे पूछते हैं। पढ़ाई लिखाई का मामला है, पूरी जिंदगी का मामला है, मानते हैं ये आप? यहाँ सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सिलेक्शन जो है ना इंस्टीट्यूशन का, बहुत मायने रखता है। लेकिन आज विज्ञापन की दुनिया है, आज बहुत सारे पब्लिसिटी आते हैं, जैसे इस कार्यक्रम को ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट आ रहा था, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी जानकारी और सही सही जानकारी दे दें। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से आप होते हुए आज यहाँ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में, हाँ तो मनीष जी बच्चों को ये बताइए, हाँ या हमें बताइए कि बच्चे जब जाएं यूनिवर्सिटी में तो उन्हें क्या देखना चाहिए, वहाँ क्या क्या उन्हें तलाशना चाहिए और तब एडमिशन लेना चाहिए।
1: अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो क्या है कि वेबसाइट की अगर बात करें तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वेबसाइट पे, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिखाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ब्रांड इंडोर्स कराना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे बच्चे उसी में लुभा जाते हैं। लेकिन मेरा ये सिर्फ बच्चों से नहीं, बच्चों के गार्जियन से भी ये कहना था कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उस विश्वविद्यालय में, मैं सिर्फ अपने विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आपको नामांकन कराना है, कहीं भी एडमिशन कराना है, एक बार उस विश्वविद्यालय में जरूर जाएं, उस विश्वविद्यालय के एलुमिनाई नेटवर्क से जरूर बात करें, उस विश्वविद्यालय के फैकल्टी प्रोफाइल को जरूर देखें, फैकल्टीज नेट क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, PhD कहाँ से हुई है उनके, कितने रिसर्च पेपर्स हैं, कितना उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और ये सब बातें बहुत बहुत मायने रखती हैं सर। क्योंकि ऐसे वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट तो हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे जानकार हों तो आपने अपने वेबसाइट को बहुत लुभावना बना दिया, और हमारे यहाँ कुछ बच्चे वेबसाइट देख के, इंस्टा रील देख के कितने फॉलोअर हैं कि बस बस हमें तो फलाने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, हालांकि पूरे इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जो बच्चों पे जाल फेंकती हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, हाँ आकर देखें, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। हम कहते हैं ना दोस्तों कि पैसा अगर चोरी हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त जो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आ सकता है। इसीलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, लग्गी से पानी नहीं पिलाना है, जाकर कुएं पर खुद पानी का डोर पकड़ कर खींचना, खुद से कुएं पर जाकर डोर पकड़ कर खींचना है और पानी निकालना है, मतलब यूनिवर्सिटी आना है, देखना है, समझना है, जानना है, परखना है, तब ये निर्णय लेना है कि यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ये चकाचौंध की दुनिया है दोस्तों, इससे बचकर रहना है और लोगों को भी बचाना है। हम गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार का नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा जो टोल फ्री नंबर है 1800121 0051, ये नंबर है। इसके अलावा वेबसाइट gnsu.ac.in। अब हम प्रोफेसर मनीष जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमें तीन सेंटेंसेस या तीन बात बताइए कि जिससे बच्चे आपके गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आकर दाखिला लें और पढ़ाई करें, बताइए मनीष जी।
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं तीन विशेषताओं में, मैं तीन लेटर्स

0: बोलूंगा। ए ए स्टैंड फॉर द एटीट्यूड, के स्टैंड फॉर द नॉलेज, एंड एस एस स्टैंड फॉर द स्किल। और हम इन तीनों पे फोकस करते हैं, बच्चों के एटीट्यूडनल बिहेवियर पे फोकस करते हैं, बच्चों के नॉलेज, के फॉर नॉलेज, नॉलेज इन्हेंसमेंट पे फोकस करते हैं, और एस स्टैंड फॉर स्किल, स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। और आपसे वार्तालाप के दौरान मैं एक चीज बताना भूल गया था, जो अच्छा हुआ जो एस वर्ड से आ गया याद, कि हमारे यहाँ एक जो है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल भी है, जहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या है कि वो बोलेंगे कि सर मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मुझे अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोलना है, मुझे अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट करना है। तो हमारे यहाँ उसकी भी फैसिलिटी है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए एमबीए करने के बाद चाहता है कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूँ, मैं किसी कॉरपोरेट हाउस में काम नहीं करूँगा, तो हमारे यहाँ जो आईआईसी टीम है वो बहुत एक्टिव है, बच्चों को बच्चों में टाइम टू टाइम बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन करवाती है, उनके इंक्यूबेशन पे काम करती है, उनके आइडियाज़ को स्क्रीन आउट करती है, उनके आइडियाज़ को रिफ्रेम करती है, उनके आइडियाज़ को इन्हेंस करती है।
1: बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। अब हमें जल्दी से बता दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए कि कैसे विद्यार्थी युवाओं को मैनेजमेंट के क्षेत्र में आना चाहिए।
0: देखिए मैनेजमेंट ही एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट ही एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे हम कोई बाउंडेशन नहीं देते हैं। जैसे अगर बीबीए में एडमिशन लेना है आपको तो आप 10+2 होना चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय में हो, आप पीसीबी हो, पीसीएम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी बैकग्राउंड से आपने अपना इंटर पास किया है, आप बीबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। रही बात एमबीए की, सेम कहानी एमबीए की है। जो एलिजिबिलिटी कैट के लिए है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 10+2+3, या अगर एनईपी के हिसाब से अभी बात करें 10+2+4 में, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हो तो आप एमबीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। हम लोग एक टेस्ट करते हैं, जेएनएसयू का अपना एक टेस्ट है, उस टेस्ट में बच्चे पास हो जाएंगे, आपका एडमिशन जो है इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में बेसिकली हम लोग काउंसलिंग ज्यादा करते हैं, बच्चे का जो प्रॉब्लम एरिया पे फोकस करते हैं, जो उसका जो स्किल गैप है कि आपको इस स्किल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब इससे फायदा ये होता है कि कल के डेट में बच्चे, चूंकि देखिए हम भी छोटे थे तो लगता था मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है तो हम भी एमबीए कर लें, मेरा दोस्त मार्केटिंग ले रहा है तो हम भी मार्केटिंग ले लें। हालांकि हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि दोस्त के कहने पे डिसीजन मत लीजिए, इवन पेरेंट्स के कहने पे डिसीजन मत लीजिए, आपकी इच्छा है, आपका स्किल सेट अगर मार्केटिंग में फिट बैठ रहा है, आपका स्किल सेट अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फिट बैठ रहा है, आपका स्किल सेट अगर डेटा एनालिटिक्स में फिट बैठ रहा है, तो आप उस स्पेशलाइजेशन को चूज।
1: बहुत खूब, जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर आपकी बात को मानेंगे मनीष जी, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, बच्चे तो मानेंगे लेकिन हमारी सोसाइटी में, हाँ हमारे आपके हमारे पड़ोस में गार्जियन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के करियर पर कि ये लो, ये नहीं लो, ये करो, ये नहीं करो, तो गार्जियन से दो शब्द कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी वो अगर आप उनसे बात कर लें।
0: पेरेंट्स को अपने बच्चों को ग्रूम करना है, फोर्स नहीं करना है कि तुमको यही करना है, आपको यही करना है, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स जो है वो बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से साथ में रहते हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे का स्किल सेट कम्युनिकेशन है, ये बड़ा अच्छा मार्केटिंग कर लेगा। बच्चा कंप्यूटर पे लैपटॉप पे लगा पड़ा रहता है, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा हमारा डेटा एनालिटिक्स फील्ड में अच्छा करेगा। पेरेंट्स अगर देखते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो लोगों से बात करने में, लोगों का प्रॉब्लम सुनने में बड़ी सक्षम है, इसका मतलब उसका स्किल सेट कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मैच कर रहा है। तो ये पेरेंट्स तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं किसी भी बच्चे के, तो पेरेंट्स को भी फोर्स न करने के बजाय पेरेंट्स को काउंसिल करने की जरूरत है, एंड लेट द डिसीजन थ्रो अवे टू द चिल्ड्रेन इटसेल्फ, बच्चों पे छोड़ दे उनका निर्णय।
1: तो गार्जियंस दोस्त बनिए, निर्णायक नहीं, बच्चों को डिसीजन लेने दीजिए। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ना, कॉलेज है ना, बहुत ज्यादा रिच है, एक बार बाहर जाने से पहले यहाँ आकर देखिए, मनीष जी से मिलिए, क्योंकि आप इन्हें सुन रहे हैं रेडियो पर। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों चलने से पहले एक बार नंबर हम फिर से बताए देते हैं, 9431899002, 9431899002 और 1800121051। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बुनियाद प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

दोस्तों आपने सुना फिल्म में सत्य पे सत्ता के इस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में गुलशन वावरा के संगीत गीत बोल और आर डी बर्मन के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

0: सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। भेंटवार्ता में डॉक्टरों की देखरेख, भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर विसगतुल्लाह रांची, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है, और यदि आपके दांत चमकीले हो, मोती जैसे चमक रहे हो, तो यही दांत आपके खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। यदि आपके दांत चमकीले और स्वस्थ हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके दांत कैसे स्वस्थ रहें, कैसे चमकीले रहें, और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, और खान पान में किन चीज़ों का सेवन किया जाए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्ला। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। दांत मोतियों जैसे हमेशा चमकता रहे, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए?
2: सबसे पहले दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है।

रोटी फिल्म के गाने को आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

गरीबों के दाता इस फिल्म के गाने को आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, भप्पी लहरी के संगीत थे और लजपत के बोल। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म के संगीत का कार्यक्रम जमा कीजिएगा चित्रपट से।

SH बिहारी के वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं के इस गाने को।

आप सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट से। चितपट की आखिरी पेशकश फिल्म है वारिस के इस गाने के साथ हम कर रहे हैं SH ये वर्मा मलिक के संगीत और उत्तम जगदीश के वर्मा मलिक के बोल हैं उत्तम जगदीश के संगीत। फिल्म का नाम है बारिश और लता मंगेशकर की और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से यहीं समाप्त।

अब आइए सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:45 पर, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार।

0: के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खारिज क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में

0: रूखा घोषित किया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
4: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
3: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
5: So if you want to make more export,
6: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
5: 6% it comes to 10% one year before.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
7: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपने

0: विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
2: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करा है। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिद अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुताल्लिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौज करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली सलाहियत में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैल अक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मजाहिर को हरगिज बर्दाश्त न करने का नुक्ता नजर अपनाया है। उन्होंने वाजे किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साल 2019 से साल 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से भारत से भागे हुए 288 मुजरिमीन को मुल्क वापस लाया है। जनाब शाह ने कहा कि एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की बदौलत हथियारों, धमाका खेज मवाद और मुनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। वहीं 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई और 15 रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया, जो बैरून मुल्क ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात मकामी करेंसियों में तजारत की अदायगियों से मुताल्लिक इकदामात के बरवक्त निफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदायगी और मैचिंग सिस्टम को मजबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहिदा अरब अमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस मुआहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नहयान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं, क्योंकि इनसे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर, काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। तवानाई, सनत, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत, खला, खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तराआत और स्टार्टअप इकोसिस्टम वो शोबे हैं जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने इस साल अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात के हजम को गुज़श्ता साल के 863 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1 खरब अमरीकी डॉलर करने का निशाना मुकर्रर किया है। जनाब गोयल ने कहा कि जामे इक्तिसादी साझेदारी मुआहदे के तहत भारत और मुत्तहिदा इमारात के दरमियान दो तरफा तजारत दुगनी होकर तकरीबन 100 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। दोनों ममालिक साल 2032 तक दो तरफा तजारत को 200 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फूड प्रोसेसिंग और बरामदात में वसीतर इश्तराक से भारतीय किसानों को यकीनी तौर पर बाजार मिलेंगे, साथ ही नौजवानों और MSMEs के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि भारत और मुत्तहिदा इमारात तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर, LNG और LPG सप्लाई और
زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے

मैदान में ताउन के इम्कान तलाश कर रहे हैं। बहरी शोबे में जदीद बंदरगाहों, बहरी जहाज साजी, बहरी जहाजों की मरम्मत और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी हुकूमत कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश साली की

0: कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
1: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
0: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के सुपरहिट प्रोग्राम आज के फनकार में बॉलीवुड के एनर्जेटिक, डायनामिक, डैशिंग, हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक यंग सक्सेसफुल एक्टर की बातें और उनकी फिल्म्स के गीतों के साथ हमें शिफाली कपूर।

सुपरहिट सॉन्ग और ब्यूटीफुल फिल्म ने इस यंग एक्टर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसमें उनकी अदाकारी के जलवों ने तो ऐसा कमाल किया कि देखते ही देखते लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन बैठे बॉलीवुड के डैशिंग अट्रैक्टिव यंग स्टार, द वन एंड ओनली रणबीर कपूर।

0: मानेना।
1: बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, उनके बेटे बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर 28 सितंबर 1982 को मुंबई में पैदा हुए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे, जिन्होंने अपनी फैमिली में बचपन से ही स्टारडम का स्वाद चखा है। एक सेलिब्रिटी फैमिली में जन्मे रणबीर एक स्टार चाइल्ड रहे हैं, जिनके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ, लेकिन साथियों, रणबीर के भीतर संघर्ष का जज्बा बेशुमार।

मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़े रणबीर ने क्लास टेंथ के बाद सन 1999 में अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया और वो फिल्म थी आ अब लौट चलें। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद रणबीर कपूर का क्रिएटिव माइंड कुछ नया सीखने की चाहत लिए फिल्म मेकिंग और अभिनय को निखारने के लिए पहुंच गया न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट।

साल 2005 न्यूयॉर्क से लौटते ही बिना समय गंवाए रणबीर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ब्लैक के लिए उन्हें असिस्ट करने लगे। संजय लीला भंसाली की पारखी नजरों ने रणबीर में छुपा हुआ एक उभरता सितारा देख लिया। और फिर क्या था, फिर सन 2007 जब संजय लीला भंसाली ने न्यू कमर्स को लेकर अनाउंस की अपनी फिल्म सांवरिया, जिसमें डेब्यू किया रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी, लेकिन रणबीर रातों रात युवा दिलों की धड़कन बन बैठे।

अपने करियर की पहली सफलता फिल्म थी बचना ए हसीनो। जी हाँ साथियों, दीपिका पादुकोणे के साथ रुपहले पर्दे पर इनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब सराही और इस फिल्म का म्यूजिक भी बेहद हिट रहा।

सन 2008 के बाद तो रणबीर कपूर एक एस्टेब्लिश सक्सेसफुल स्टार बन गए और साल 2009 की बात करें तो इनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं। एक के बाद एक हिट फिल्म्स का सिलसिला चल निकला और अपनी दमदार एक्टिंग से रणबीर ने सबके दिलों में जगह बना ली। अयान मुखर्जी की वेकअप से ढो या राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी या फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, साल 2009 की इन फिल्मों ने रणबीर को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, यानी देखते ही देखते स्टारडम रणबीर की झोली में आ गया।

रणबीर कपूर की तमाम फिल्म्स ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन उन फिल्म्स में अपने शानदार दमदार अभिनय के जलवों से सबका दिल जीत लिया रणबीर ने। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में तो इनके अभिनय की भरपूर प्रशंसा हुई।

साल 2011 में जहां एक ओर बच्चों की फिल्म चिल्लर पार्टी में रणबीर ने एक आइटम नंबर किया, तो दूसरी ओर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में जॉर्डन जाखड़ का रोल बखूबी प्ले करके ढेरों वाहवाइयां लूटी, जो कि उस वर्ष की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों में से एक थी।

रणबीर कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डांसिंग स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, उनकी अदायगी, सब कुछ शानदार है। तभी तो है रणबीर युवा दिलों की धड़कन। रणबीर कपूर के कैरियर का ग्राफ बढ़ता ही गया। साल 2012 अनुराग बसु की फिल्म बर्फी में नजर आए रणबीर कपूर, जिसमें उनके साथ थीं प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज। एक बेहतरीन फिल्म रणबीर के करियर की। इतनी

साल 2013, अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ रणबीर की जोड़ी ने रुपहले पर्दे पर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया।

साल 2015 में आई तमाशा, साल 2016 की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म साबित हुई करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर के साथ थी खूबसूरत ऐश्वर्या राय और चुलबुली अनुष्का शर्मा। और इस फिल्म के लिए रणबीर को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया।

0: एक बेटा।
1: बॉलीवुड के इस यंग एनर्जेटिक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर रणबीर कपूर को फिल्मों के अलावा फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सोशल वर्क्स में भी रणबीर हमेशा आगे आते हैं। साल 2012 में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जोया अख्तर की एक शॉर्ट फिल्म में कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ भी नजर आए रणबीर कपूर।

स्टाइलिश यंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इनकी झोली में है 5 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2 स्टारडस्ट अवार्ड्स और 4 जी सिने अवार्ड्स।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के चमकते सितारे रणबीर कपूर के बारे में, उनकी फिल्म्स के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके उसे सरल सजीले शब्दों में पिरोकर आपके लिए पेश किया शिफाली कपूर ने। प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह, विविध भारती के इस सुपरहिट प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत शिफाली कपूर को, नमस्कार। आज के फनकार।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संजय।
1: वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियाँ। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक। गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष डी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी, ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
2: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि

0: शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का 2रा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर्स साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All-Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea Korea's Kang Yoon-seo. It was a high-scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here.

0: Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
2: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
2: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
2: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
0: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.

0: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम 20 एडिशन ऑफ एशिया गेम 2026 का हाईलाइट आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिर 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:20 हो चुके हैं। आइए शामिल होते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बने रहे हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक। और आज के खूबसूरत पल को हमने यादगार बनाया है। हम सभी जानते हैं आज 28 सितंबर स्वर कोकिला लता जी का आज जयंती है, लता जी की जयंती है। तो शत शत नमन करते हैं हम सभी उन्हें स्वर कोकिला, और कहते हैं कि सुरों की देवी जो आज और

कल और हमेशा हम सभी के दिलो दिमाग पे छाई रहेंगी। उनकी आवाज़, उनकी पहचान, हमने शारदे को तो नहीं देखा लेकिन उनके रूप में हमने साक्षात, हम सभी ने उनके दर्शन किए। आज हमारे आज रेडियो

श्रोताओं, 28 सितंबर को भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर यानी कि उनका जन्मदिन जन्मदिवस आज के दिन मनाया जाता है, जिन्हें उनकी सुरीली और जादुई आवाज़ के लिए पूरी दुनिया में याद किया जाता है। जी हां श्रोताओं, जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में मशहूर संगीतकार पंडित दीनदयाल मंगेशकर के यहाँ हुआ था। उनका नाम पहले से हेमा रखा गया था, जिसे बाद में पिता ने नाटक की एक पात्र लतिका से प्रभावित होकर लता कर दिया। उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान है। जी।

खूबसूरत है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। सच में अगर ये सही माने तो ये हम सभी कह सकते हैं, उनके बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा है ही नहीं। क्या खूबसूरत नगमा जो हमारी लता जी ने गाए, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़। वो चाहे गाने जिस तरह की हो, जिसके साथ भी उन्होंने गाए, गाने को एक रूप, एक रंग, एक आत्मा की तरह उन्होंने पिरो दिया। भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में उनकी अतुलनीय योगदान तो है ही। वर्ष 1901 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1989 में दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। आज हम उनकी जयंती पे 103 मेगाहर्ट्ज पे रजनीगंधा के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल किए हैं उनकी यादों को, उनकी बातों को। तो आइए सुनते हैं इस गाने को।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। जी हाँ, आज की इस खूबसूरत पल को हमने यादगार बनाया है उनकी यादों से, उनके गाए गीत से, जो हमेशा हम सभी के जेहन में है। कहते हैं कि लोग चले जाते हैं, पर उन्हें हम कैसे भूल पाए। जिन्हें हम कभी भूलते ही नहीं, वो हमेशा याद आते हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनकी जयंती पर विशेष हम सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम उनके गाए गीतों के साथ इस खूबसूरत पल को यादगार बना रहे हैं। 103 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम विशेष रजनीगंधा, जहां यादें छुपी है और उन बातों को याद करते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की।

0: नजर आऊँ या ना आऊँ तेरे साथ होगी मैं भी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जी हाँ बिल्कुल, आज भी वैसा ही लगता है, वो हमेशा हम सभी के साथ में है। हम बातें कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की, आज उनकी जयंती है 28 सितंबर। श्रोताओं, लता मंगेशकर का जन्म जो कि आज 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। हम सभी जानते हैं उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे, और उन्हीं के घर में एक अनमोल धरोहर, अनमोल रत्न ने जन्म लिया। और कहते हैं कि उन्हें भारत की स्वर कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में उनके अपूर्व योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो रत्न तो थी ही। उन्हें भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उनकी बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भाई हृदयानंद मंगेशकर भी संगीत की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन आज खास इस पल को हमने सजाया है लता दीदी की याद में।
1: भाई और बहनों, गाना है तो माँ को रुला दिया, भाई का गाना है तो बहन को रुला दिया, बहन का गाना है।

श्रोताओं, आज के इस खूबसूरत पल को हमने सजाया था उन यादों से, उन गानों के साथ, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती 28 सितंबर। जी हाँ, और ये सुनहरे सफ़र में उनके गाए अनमोल गीतों से हमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दीजिए इजाज़त। रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए 11:05 पर, अंग्रेजी समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष

0: से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government